क्या नो नश मिला तो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंचन धर्मशाला कहने श्रोताओं मैं या तो हाँ भी अपनी रेडियो दोस्त रुचि का हाजिर हो यू कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महकता श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीते कहने बहुत सारे इं बनी रहा रेडियो गुंचन धर्मशाला ने गूंज।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

किचन धर्मशाला गणेशोदा तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका गन्ने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर ये तो सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला गणेश श्रोताओं तो सारे कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक जी श्रोताओ बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनने न कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

धर्मशाला गणेशोदा तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका गन्ने तो सारे इन्हें बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

कुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ, इस वक्त वहाँ सारे कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक जी श्रोताओ, ता पढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनते न कार्यक्रम दा अगला गीत। तो हाँ सारी इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने।

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने, नए पुराने।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

सो जब भी मन चाहे आपका सुकून, तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। सुबह के 9 बज गए हैं और ये समय रहता है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का। तो श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हो गई है आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। सबसे पहले सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपने अपने काम में लग चुके होंगे या अपने काम की तरफ रवाना हो चुके होंगे। तो श्रोताओं, आज दिन बहुत अच्छा है और देखिए आज बुधवार है और जून महीने की 3 तारीख है, तो कहीं ना कहीं समय दौड़ता चला जाता है और हम भी इस समय के साथ दौड़े चले जाते हैं। श्रोताओं, हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, एक नई किरण लेकर आता है हमारे लिए, एक नई आस लेकर आता है कि हमारे पास और भी बहुत सा समय है। अभी जीवन में बहुत कुछ करने को बाकी है, लेकिन हाँ, सिर्फ एक सकारात्मक सोच अगर हमारे साथ रहेगी तो हम हर मुकाम को पूरा कर पाएंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला की शुरुआत हमने कर दी है और देखिए ये कार्यक्रम जो है सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चलता है। तो ये 2 घंटों का जो सफ़र है आज आप बिताएंगे अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ और आज कार्यक्रम में होंगी आपके साथ बातें और कुछ जानकारियाँ जो आप तक पहुँचाई जाएंगी रेडियो धर्मशाला, रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो कार्यक्रम की

शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे विचार के साथ। जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है हर दिन कुछ नया सीखना। आज का दिन भी आपको मिला है श्रोताओं, ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो कार्यक्रम में चलते हैं आगे और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की पहले से गीत के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत जिसे हमने लिया है फूल और कांटे फिल्म से। आवाज़ें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। अभी आप सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत हमने की इस प्यारे से गीत के साथ। श्रोताओं, बहुत सारी बातें आज कार्यक्रम में आपके साथ होंगी और नए दिन, नई बातें, नई सोच, नए तजुर्बे हमें मिलते रहते हैं और हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ समझते हैं और ये ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती भी है। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब समय है श्रोताओं आप तक पहुंचाने की जानकारी मौसम की। तो मौसम का आंखों देखा हाल जो है यही है कि मौसम जो है ठीक है, धूप खिली हुई है और मौसम में गर्माहट अभी तो इतनी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा मौसम गर्म भी हो सकता है और मौसम ठंडा भी हो सकता है, क्योंकि आजकल ये जो आँख मिचोली मौसम हमारे साथ खेल रहा है इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते ना कि रोज़ हम लोग आकर मौसम की जानकारी आपको देते हैं और रोज़ मौसम पर बातचीत करते हैं, लेकिन आज ज़्यादा मौसम के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि जो बदलता रहता है उसके बारे में बात करें भी क्या। खैर, कार्यक्रम में मौसम की जानकारी आपको ज़रूर देंगे। आज धर्मशाला का अधिकतम तापमान बना हुआ है 16 डिग्री सेल्सियस और श्रोताओं हवा में नमी की बात करें तो वो बनी हुई है 77%, और साथ ही मौसम विभाग मौसम के बारे में क्या कहता है उस पर भी हम नज़र ज़रूर दौड़ाएंगे। श्रोताओं, हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम के मिजाज अब बदलने लगे हैं। जून की शुरुआत के साथ साथ मौसम सुहावना बना हुआ है और मंगलवार को राज्य के अधिकांश इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे, जबकि कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अब 3 से 6 जून तक लगातार 4 दिन प्रदेश के कई जिलों में आंधी, गर्जन, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही श्रोताओं, विभाग के अनुसार 3 से 7 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा और कई क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। 3 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने और साथ ही तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। तो श्रोताओं, ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि आजकल मौसम को देखिए, समझिए और उसके अनुसार ही कोई ना कोई अपना प्रोग्राम बनाइए। वैसे तो कोशिश कीजिए कि आजकल गर्मियों का मौसम है और हम लोग सोचते हैं कि कहीं हिल स्टेशन पे चलते हैं, कहीं अच्छी जगह चलते हैं, लेकिन मौसम जो कह रहा है उसके अनुसार हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जब तक मौसम साफ़ नहीं होता कहीं भी हिल स्टेशन पे ना जाएं। तो श्रोताओं, मौसम की जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और करवाएंगे आपका मनोरंजन और सुनवाएंगे कार्यक्रम में ये प्यारा सा गीत, रात और दिन। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और आपको बता दें 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर डटवाल की आवाज़ पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और सुन भी रहे हैं। तो हमीरपुर के जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को भी सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे और कार्यक्रम के साथ जुड़े होंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, दिल की गिरह खोल दो। तो गिरह जो है उसका अर्थ होता है श्रोताओं, गांठ। बिल्कुल, दिल की गिरह खोल दो यानी कि मन में छुपी हुई हमारी बहुत सारी उलझनें होती हैं, दुख होते हैं, संकोच होते हैं, बहुत सारी भावनाएँ ऐसी होती हैं जिन्हें लेकर हम बैठे रहते हैं। तो ये गीत हमें ये सिखाता है कि मन में अगर कोई भी उलझन है, कोई भी आपको दुख है या कोई संकोच है, कोई भी बात अगर आपके मन में है तो उसे निकाल दीजिए और खुलकर अपने मन की बात को कीजिए। कहते हैं कि हम अगर अपने मन में कोई बात को रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए दुख का कारण बनता है। इसलिए कोई भी मन में दुख हो, कोई भी पछतावा हो, कोई बात हो, कोई भी गांठ हो, उसे खोल देना चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए। बात करने से हमें ज़रूर किसी न किसी बात का हल मिलता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सुन रहे हैं और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 11 बजे तक। कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके साथ होनी हैं, बहुत सारी जानकारियां भी आपको पहुँचानी है श्रोताओं, लेकिन फिलहाल के लिए कार्यक्रम में समय हुआ जा रहा है समाचारों का। और समाचार सुनना भी बहुत ज़रूरी है, अपने देश प्रदेश की खबरें हमें मिलती हैं। तो चलते हैं, पहले सुनते हैं समाचार और समाचारों के बाद फिर से बातें करेंगे, आपका मनोरंजन करवाएंगे।
1: आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, आमजन को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करना व हरित परिवहन को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की है प्राथमिकता। सांसद सुरेश कश्यप का दावा, शहरी निकाय व पंचायती राज चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में जीत करेगी हासिल। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में स्वगणना अभियान जारी, आम जनमानस स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी 15 जून तक ऑनलाइन कर सकते हैं दर्ज। कुल्लू जिला में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या में कमी लाने के लिए नसबंदी व एंटी रेबीज वैक्सीन अभियान जारी। और मौसम विभाग का आज से 6 जून तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा और अंधड़ का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें आम जन को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। सोलन में पहुंची 80 इलेक्ट्रिक बसों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य HRTC को मजबूती प्रदान करने के साथ ही राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा देना है और इस दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों की सुविधा के अनुसार बनवाई गई है और इसमें 32 आरामदायक सीटों के साथ सामान रखने का भी उचित प्रबंध होगा। उन्होंने कहा कि बसों के लिए चिन्हित स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इन ई बसों के रूट ट्रायल का कार्य पूरा हो चुका है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजों से साफ कर दिया है कि राज्य में कांग्रेस सरकार जनमत खो चुकी है। नाहन में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि इन चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि भाजपा ने पूरे प्रदेश में जीत का परचम लहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव टालने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो गारंटियां और वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते जनता ने चुनाव में कांग्रेस को नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि ये चुनावी नतीजे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का रोड मैप है और भाजपा आगामी चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करेगी।
2: जिस प्रकार के नतीजे आए हैं उससे ये साबित हो गया कि प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है वो जनमत को खो चुकी है और ये जो जीत का क्रम है अब ये रुकने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आगे अब 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने वाली है, क्योंकि जो अभी पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव है, जो ग्राउंड रूट का जो कार्यकर्ता है या धरातल के ऊपर जो आम जनमानस है, वो इस बात को समझ चुका है कि हमारा जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी का ही है और प्रदेश में अपनी सरकार।
1: राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा

0: हैं। उन्होंने कहा कि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संसाधनों के वितरण व शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। हेमराज बैरवा ने बताया कि जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यमों से आयोजित की जा रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल, त्वरित व पारदर्शी बनेगी। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में आम जनमानस 15 जून तक स्वगणना पोर्टल पर लॉगिन कर घर बैठे अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में भी स्वगणना अभियान आरंभ किया गया है। हेमराज बैरवा ने बताया कि प्रक्रिया पूर्ण होने पर एक स्वगणना आईडी प्राप्त होगी, जिसे घर आने वाले प्रगणक के साथ साझा करना होगा। उन्होंने जिला के सभी नागरिकों से जनगणना 2027 के इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान भी किया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी DTS सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। बागवान मंत्री जगत सिंह नेगी ने बिलासपुर व सिरमौर जिले में HP शिवा परियोजना की प्रगति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की कल शिमला में अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक में धरातल पर चल रहे सिविल कार्यों की स्थिति, काम के दौरान पेश आ रही चुनौतियों, गुणवत्ता और कार्यों को समय पर पूरा करने के संबंध में भी चर्चा की। जगत सिंह नेगी ने संबंधित विभाग के सौंपे गए कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 15 जून तक संतोषजनक प्रगति न होने की स्थिति में खराब प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जाएंगे। बागवानी मंत्री ने कहा कि कार्य में गुणवत्ता न होने पर संबंधित फर्मों के साथ साथ देखरेख के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। कुल्लू जिले में रेबीज के मामलों को कम करने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग द्वारा आवारा कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने व नसबंदी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर कुत्तों की बढ़ती संख्या को कम करना और इनके द्वारा लोगों को काटने के मामलों में कमी लाना है। एक रिपोर्ट।
1: कुल्लू जिला में रेबीज के मामलों को कम करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा पहल जारी करते हुए मुहिम चलाई गई है। पशुपालन विभाग ने पिछले 5 माह के दौरान 4,416 कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई है। इसके अलावा 224 लावारिस कुत्तों की नसबंदी भी की गई है। विभाग ने वैक्सीनेशन और नसबंदी का कार्यक्रम जारी रखा है, ताकि कुत्तों के काटने तथा सड़कों पर उनकी बढ़ती संख्या के मामलों में कमी लाई जा सके। विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिला में पशु चिकित्सालय माहौल के अलावा मनाली, रायसन व बंजार चिकित्सालय को इस कार्यक्रम के तहत चयनित किया गया है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर अरुण शर्मा के अनुसार जिला के हर क्षेत्र में पालतू और लावारिस कुत्तों के नसबंदी और एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जा रही है, ताकि रेबीज की बीमारी के खतरे को कम किया जा सके। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेब्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में आगामी 8 जून तक मौसम खराब रहेगा। विभाग ने आज से 6 जून तक राज्य के अलग अलग स्थानों पर बारिश, अंधड़ व बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले दिनों प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा व चोटियों पर हुए हल्के हिमपात से दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। खासतौर पर मैदानी व निचले क्षेत्रों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में मौसम हल्का ठंडा बना हुआ है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से सुर्खी दी है, दूसरे राज्यों से ब्याह कर लाई गई महिलाओं को आरक्षण नहीं, जिस राज्य में कोई विस्थापित होता है वहां उसे आरक्षण नहीं मिल सकता। पंजाब केसरी ने पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन पर लिखा है, लगभग 4 वर्ष के अंतराल के बाद बहाल हुई कांगड़ा घाटी रेल सेवा। दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक कांगड़ा में नैरो गेज ट्रेन सेवा बहाल, अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। दैनिक जागरण के शब्द है, शिमला में सील्ड सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोकने पर वकीलों का प्रदर्शन, मंत्री की गाड़ी का चालान कटवाया। बड़े अफसर घटाएंगे कर्मचारी बढ़ाएंगे शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल के 800 और पद भरेंगे। वही हिमाचल दस्तक के अनुसार

अफसरों के काडर में कटौती कर निचले स्टाफ की ज्यादा भर्ती करेगी सरकार। दैनिक भास्कर के शब्द है, पूर्व सैनिकों की मानद नियुक्ति, 246 को बनाया हेड कांस्टेबल तो 115 बने एएसआई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, आमजन को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करना व हरित परिवहन को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की है प्राथमिकता। सांसद सुरेश कश्यप का दावा, शहरी निकाय व पंचायती राज चुनावों के नतीजों के बाद भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में जीत करेगी हासिल। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में स्वगणना अभियान जारी, आम जनमानस स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी 15 जून तक ऑनलाइन कर सकते हैं दर्ज। कुल्लू जिला में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या में कमी लाने के लिए नसबंदी व एंटी रेबीज वैक्सीन अभियान जारी। और मौसम विभाग का आज से 6 जून तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा और अंधड़ का चलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं गुड मॉर्निंग धर्मशाला आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, जानकारियों और समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम में और चलते हैं आगे, बढ़ाते हैं इस सफ़र को, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, सैयारा। इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे फहीम अब्दुल्ला की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और आप सभी ने ट्यून भी किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोता, सुबह का ये समय है और इस समय में हम लोगों को अपने बहुत सारे काम करने होते हैं, अपने काम करते भी हैं और कहीं ना कहीं निकलने के लिए हम लोग कई बार थोड़ा सा देर से भी निकलते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोगों को जल्दी होती है कहीं भी पहुंचने की, टाइम पर हम ना पहुंचे इसके लिए हम लोग ड्राइव करते हैं फास्ट। तो श्रोताओं, सुबह का समय ऐसा होता है कि हर किसी को अपने काम पर पहुंचने की जल्दी होती है और जल्दबाजी में हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा स्पीड अपनी बढ़ा देते हैं, चाहे हम दो पहिया वाहन चला रहे हों या चार पहिया वाहन चला रहे हों। ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि अपने समय के अनुसार समय पर निकलें, यानी कि आपको अगर लगता है कि जहां हमें पहुंचना है उसमें 15 मिनट लगने हैं तो भी आप 20 या 25 मिनट लेकर चलिए, ताकि रास्ते में अगर कहीं ट्रैफिक हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है तो हम हड़बड़ी में अपनी स्पीड को ना बढ़ाएं, क्योंकि कई बार ऐसा करने से हमें परेशानी तो होती ही है, साथ में हमारे साथ और भी जो लोग होते हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो श्रोताओं, अपनी जो स्पीड है उसे लिमिट में रखिए और अपने आप को सेफ रखिए, औरों को भी संभाल कर रखिए। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब हम बात करेंगे आज के दिन की, यानी कि 3 जून की प्रमुख ऐतिहासिक कुछ घटनाओं की। सबसे पहले बात करेंगे श्रोताओं हम कि भारत के तत्कालीन वायसराय ने देश के विभाजन और स्वतंत्रता की रूपरेखा आज के दिन पेश की थी 1947 में। इसे 3 जून प्लान या फिर माउंटबेटन योजना भी कहा गया। इसके तहत भारत और पाकिस्तान नाम से दो अलग देश बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके साथ ही श्रोताओं, आज ही के दिन 1918 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इंदौर में हुए सम्मेलन में हिंदी को भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। 1915 की बात करें तो आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। साथ ही श्रोताओं, विश्व साइकिल दिवस 2018 में आज ही के दिन मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और स्वास्थ्य के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बाइसिकल डे की स्थापना की गई और इस पर आज कार्यक्रम में हम आपके साथ भी करेंगे बहुत सारी बातें। तो श्रोताओं, बातों को अभी यहीं पर रोकते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। लीजिए सुनिए जानवर फिल्म का ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।
1: पावर पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और ये प्यारे से गीत श्रोताओं जब भी सुनने को मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भी इन गीतों के साथ गुनगुना लेते हैं। और पुराने गीतों की बातें करें तो जब भी इनको सुना जाए अच्छा ही लगता है श्रोताओं। और हम कोशिश करते हैं गीतों को फेर बदल कर आपके सामने लेकर आएँ, आपके समक्ष लेकर आएँ, और आप सभी को ये गीत पसंद आते होंगे, ये उम्मीद हम रखते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में हम बात कर रहे थे 3 जून के इतिहास की। तो आज ही के दिन बहुत सारे प्रसिद्ध हस्तियों के जन्म भी हुए थे, उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे श्रोताओं। और 3 जून 1867 में प्रसिद्ध शिक्षाविद और शारदा एक्ट यानी कि बाल विवाह निषेध कानून के प्रणेता का जन्म भी हुआ था। मलयालम साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप का जन्म भी आज के दिन यानी कि 3 जून 1901 को हुआ था। इसके साथ तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज राजनेता एम करुणानिधि, जिनका जन्म भी 3 जून 1924 को हुआ था। ये तो थी कुछ विशेष घटनाएं और आज के दिन जन्मे कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बातचीत। अब हम कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ेंगे और आपको सुनाएंगे एक प्यारा सा गीत। लीजिए श्रोताओं, सुनिए, ये है मुंबई मेरी जान, इस फिल्म का गीत कुमार शानू की आवाज़ में आप सभी के रेडियो सेट पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, मेरा चांद मुझे आया है नज़र। श्रोता हूँ, वैसे तो सुबह का समय है, चांद अभी नज़र नहीं आता है, शाम को ही नज़र आता है। हाँ, लेकिन गीत तो गीत है भाई, जब भी सुना जाए अच्छा लगता है। और श्रोता हूँ, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में जैसा कि आज 3 जून है, और 3 जून को ऐसा क्या खास रहा है, किस पर हम बात करने वाले हैं उसके बारे में ज़रूर आपको बताएंगे। आज 3 जून है और पूरी दुनिया विश्व साइकिल दिवस मना रही है। तो साइकिल का नाम सुनते ही श्रोताओं, आपको आपका बचपन ज़रूर याद आया होगा कि बचपन में हम लोगों ने बहुत सारी साइकिल चलाई हैं। मतलब हम लोगों ने क्या, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे तब साइकिल ही ज़्यादा चलाते थे, तब स्कूटर या ये जो मोटरसाइकिल है ये बहुत कम हुआ करते थे या बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे, और साइकिल हर किसी के घर में हुआ करती थी। उस साइकिल को भी हम लोग लॉक लगा कर रखते थे, उसको संभाल के रखते थे। तो आज विश्व साइकिल दिवस जो है वो सभी मना रहे हैं। श्रोता, साइकिल केवल एक साधारण वाहन नहीं बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सादगी का प्रतीक भी है। साइकिल चलाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हृदय मजबूत बनता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। इसके साथ ही साइकिल प्रदूषण भी नहीं फैलाती है, ईंधन की बचत करती है और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल श्रोताओं, और जिस समय साइकिल ज़्यादा हुआ करती थी, हमारे बड़े बुज़ुर्ग साइकिल पर भी कितने किलोमीटर का सफ़र तय करते थे, उस समय ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, पर्यावरण बहुत साफ़ सुथरा था, क्योंकि साइकिल जो है वो बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाती है। ऐसा हमने अभी आपके साथ कहा भी है और ऐसा होता भी है। आजकल के समय में देखा जाए तो लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए व्यायाम के तौर पर भी साइकिल को ड्राइव करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी एक्सरसाइज के तौर पर जो है वो साइकिल को ड्राइव करते हैं सुबह शाम जब भी उन्हें समय लगता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में भी हलचल होती रहती है और हमारा शरीर बिल्कुल ठीक रहता है। तो बहुत सारे जो आराम की चीज़ें हैं बन तो गई हैं, आराम हमें मिल गया है, लेकिन आराम के होने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों ने भी हमारे यहाँ घर कर लिया है। तो श्रोताओं, साइकिल जो है वो आज भी बच्चों की पहली पसंद है। अगर किसी बच्चे को आप साइकिल खरीद कर देंगे तो वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। पैडल मारकर उसे चलाने में जो मज़ा है वो किसी और वाहन को चलाने में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो श्रोताओं, विश्व साइकिल दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि जहाँ संभव हो छोटी सी दूरी तय करने के लिए साइकिल का उपयोग करना चाहिए, और स्वस्थ जीवन तथा स्वस्थ पर्यावरण की दिशा में अपना योगदान हमें देना चाहिए। तो कार्यक्रम में इस बात को यहीं पर अब रोकते हैं हम लोग, और भी बातें आपके साथ करनी है, लेकिन श्रोताओं बीच बीच में गीत संगीत जो है वो चलते रहना चाहिए। तो लीजिए, आपके नज़र करते हैं गैम्बलर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सभी के रेडियो सेट तक।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में और भी बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है और जानकारियां भी आप तक पहुंचानी है, लेकिन फिलहाल के लिए कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम लौटेंगे कार्यक्रम में और आपके साथ करेंगे बातचीत। तो आप सभी यूँ ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में इस ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को एक बार फिर से सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में हम आपके साथ करते हैं बातचीत और आप तक पहुँचाते हैं जानकारियाँ। जानकारियों की ओर बढ़ेंगे लेकिन पहले सुनेंगे कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत बेटी बेटे फिल्म से, और इस गीत में आवाज़ें हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओ, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। ये संगीत के साथ साथ बातचीत करना भी ज़रूरी है श्रोताओं, और बातचीत आज हम करेंगे थोड़ी सी। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, और उनकी कमी आ जाए तो क्या होगा। तो हमारे जीवन की जो रफ्तार है श्रोताओं, काफ़ी हद तक पेट्रोल और डीजल पर निर्भर है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये संसाधन सीमित हैं? एक बार समाप्त हो जाने पर इन्हें दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इनका समझदारी से उपयोग करना समय की मांग है। पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए हम कई छोटे लेकिन प्रभावी कदम उठा सकते हैं। छोटी दूरी के लिए पैदल चलने या साइकिल का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि हमने आज कहा भी है कि आज भी हम वर्ल्ड बाइसिकल डे मना रहे हैं, यानी कि अगर थोड़ी सी दूरी पर भी आपको जाना है तो आप उसके लिए साइकिल रख सकते हैं, साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। और साइकिल का उपयोग करके हम पेट्रोल डीजल की तो बचत करते ही हैं, साथ में अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखते हैं, पर्यावरण को भी साफ़ सुथरा रखने में हम सहयोग कर सकते हैं। साथ ही श्रोताओं, अगर संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें या कार पुलिंग अपनाएं, इससे ईंधन की बचत होगी और सड़क पर वाहनों की संख्या भी कम होगी। वाहनों की नियमित सर्विस कराना भी बहुत ज़रूरी है। सही टायर प्रेशर और अच्छी तरह से मेंटेन किया गया वाहन कम ईंधन खर्च करता है। अनावश्यक रूप से इंजन चालू रखने से भी ईंधन की बर्बादी होती है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल या लंबे इंतज़ार के दौरान वाहन बंद कर देना एक अच्छी आदत होती है। श्रोताओं, ये आदतें हमारे लिए खुद के लिए पर्सनली भी सहयोगी हैं और सबके लिए सहयोगी हैं, क्योंकि अगर एक एक इंसान इस चीज़ को सोचेगा तो कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि पेट्रोल और जो डीजल है इसकी जो खपत है इसे कम किया जा सकता है, इसकी बचत की जा सकती है। और ये चीज़ें जो हैं सोचने वाली हैं, इन बातों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कमी हो सकती है, क्योंकि देखिए पहले का समय था जो बहुत कम रोड पर हमें गाड़ियां मिलती थी, कोई इक्का दुक्का जो गाड़ी होती थी तो दिखती थी, लेकिन आजकल हर घर में एक गाड़ी नहीं, दो नहीं, तीन चार चार गाड़ियां भी होती हैं। और जब हर सदस्य के पास अपनी गाड़ी होगी और हर सदस्य अपनी गाड़ी को निकालेगा तो रोड पर ट्रैफिक तो होगा ही होगा। रोड तो वही के वही है, उसका जो है वो बढ़ावा जो बोल सकते हैं वो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ट्रैफिक में बढ़ावा हुआ है, गाड़ियों में बढ़ावा हुआ है। तो छोटी छोटी बातें हमें सोचनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमें बचत में अपना सहयोग देना चाहिए। तो इस सोच के साथ अपनी बातों को यहीं पर रोकेंगे और कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ेंगे एक प्यारे से गीत की ओर। बैंग बैंग इस फिल्म का गीत अब आप सभी सुनेंगे विशाल ददलानी की आवाज़ में।
1: This one's for you.

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप तक पहुंचाएंगे एक जानकारी, एक खबर, और वो खबर ऐसी जो सच में सोचने को मजबूर कर दे। श्रोताओं, ये खबर जो है दाढ़ी की है। दाढ़ी में एक महिला ने आत्महत्या कर ली पिछले दिन। मृतका की पहचान जो है पुलोमा, आयु 45 वर्ष, पत्नी हिमेश कार्की निवासी दाढ़ी धर्मशाला के रूप में हुई है, और पुलिस ने मृतका के पति और सास के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार चीलगाड़ी निवासी प्लोमजा ने पुलिस थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी बहन प्लोमा की शादी 2006 में दाढ़ी निवासी हिमेश कार्की से हुई थी। दंपति का एक 16 वर्षीय बेटा भी है। शिकायत के अनुसार शादी के करीब एक वर्ष बाद पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया था और दोनों के बीच तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन था। आरोप है कि पति और सास के व्यवहार से आहत होकर पलोमा ने मंगलवार को सुबह करीब 7:30 बजे कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। श्रोताओं, आपको बता दें कि जिस खबर को मैं पढ़ रही हूँ, यानी दाढ़ी की जिस महिला की खबर आप तक पहुँचा रही हूँ, इसे मैं भी पर्सनली बहुत अच्छे से जानती थी और बहुत अच्छी मेरी क्लासमेट रह चुकी है। और अगर व्यवहार की बात की जाए तो इतनी खुश मिजाज व्यवहार की थी, जब भी मिलना खुशी से मिलना, हंस कर मिलना, हंसते रहना व्यवहार था। लेकिन कई बार हम अपनी हंसी के पीछे कौन सा गम छुपाए बैठे हैं वो वही इंसान समझ सकता है। लेकिन श्रोताओं, कार्यक्रम में इस जानकारी को आप तक पहुंचाने का मकसद यही है कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी मिलती है, लेकिन जब घरों में ऐसी बातें हो जाती हैं जो किसी के मन को, किसी के दिल को ठेस पहुंचा दें, और कब कोई ऐसी डिसीज़न लेने पर मजबूर हो जाए हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि घर में अगर छोटी मोटी बात होती भी है तो उसे जल्दी से निपटा लेना चाहिए। किसी को इतना मजबूर नहीं कर देना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर दे। और यहाँ पर एक महिला की ही नहीं, एक माँ की भी बात हो रही है। एक माँ जिसका बच्चा अगर उसे छीन लिया जाए या उसे दूर कर दिया जाए तो वो जीते जी मर जाती है। तो श्रोताओं, हम अपने श्रोताओं से यही कहेंगे, हम लोगों के घर में भी अगर ऐसा माहौल है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो अपने ये गिले शिकवे जल्दी से जल्दी निपटा लीजिए। ना किसी को दुख दीजिए, ना दुखी रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी से जीने दीजिए। ये एक संदेश है जो हम देना चाहते हैं, लेकिन समझ अपनी अपनी है। कुछ लोग इस बात को समझ भी लेंगे, कुछ लोग नहीं भी समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो ये हाथ से ये जो आत्महत्याएं हैं ये होती ही रहेंगी, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए। 4 लोगों का एक परिवार होता है, अगर वो 4 लोग ही आपस में प्यार से ना रह पाए, या किसी एक इंसान को हमारी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उस जीवन का क्या फ़ायदा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आप तक पहुंचाई ये जानकारी, और ये जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे एक प्यारा सा गीत।
1: जिंदगी

श्रोता कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना अंदाज फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का। इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से कार्यक्रम में हम जुड़ेंगे श्रोताओं, आपके साथ करेंगे बातचीत और आपका करवाएंगे मनोरंजन गीतों के माध्यम से। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है और आप सभी ने इस समय ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, इस अंतराल से पहले हम बात कर रहे थे एक खबर की, जो दाढ़ी में महिला ने आत्महत्या की है उस पर। तो श्रोताओं, हमें सोचना चाहिए कि क्या सचमुच आत्महत्या किसी समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं, आत्महत्या एक स्थायी निर्णय है, जबकि अधिकांश समस्याएं अस्थायी होती हैं। आज जो परिस्थिति असहनीय लग रही है, समय, सहयोग और सही मदद के साथ उसमें बदलाव आ सकता है। यदि कभी हमारे मन में खुद को नुकसान पहुंचाने या जीवन समाप्त करने जैसा विचार आए तो उन्हें अकेला ना झेलें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति, माता पिता, परिवार के सदस्य, मित्र, शिक्षक या काउंसलर से तुरंत बात करें। अपनी भावनाओं को साझा करना कमजोरी नहीं बल्कि साहस की निशानी होती है। श्रोताओं, इस खबर में हम लोगों ने ज़रूर सुना, लेकिन जो मृतिका है उन्हें अपनी सिस्टर के साथ हर बात को शेयर करती थी वो, और कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम बात करके अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक हद तक ही एक इंसान सहन कर सकता है। हो सकता है बहुत समय से हम वो चीज़ सहन कर रहे हों, लेकिन श्रोताओं, जब ऐसा लगे कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो ज़िंदगी ख़त्म कर लेना कोई समाधान नहीं है। जहाँ रिश्ते निभा सकते हो निभाओ, लेकिन जब लगता है कि ये रिश्ता नहीं निभ सकता तो उस रिश्ते को वहीं पर छोड़ दो, ख़त्म कर दो। लेकिन हाँ, ज़िंदगी को बिल्कुल भी ख़त्म मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है। अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे, ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे। दुख, दर्द, समस्याएं हर किसी की लाइफ में आती हैं। कुछ समय के बाद अच्छा वक्त भी आता है और अच्छे के बाद बुरा वक्त भी आता है। हर वक्त के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो कार्यक्रम में अब चलते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं ये बहुत ही प्यारा गीत।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बिल्कुल श्रोताओं, जिंदगी में कब कौन सा समय कैसा आ जाए हमें भी नहीं पता होता, लेकिन जब वो समय आता है उस समय को किस तरह से हमने निभाना है, किस तरह से उस समय से निकलना है, ये हमें आना चाहिए और हर समय के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर आज हमारा समय अच्छा है तो हो सकता है कल को हमारा समय बुरा भी आ सकता है। अगर बुरा वक्त आ भी जाए तो उससे हमें किस तरह से निकलना है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को चलाना है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। और वक्त अच्छा बुरा जैसा भी हो, हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। श्रोता, एक छोटी सी बात है जो आपके साथ शेयर करूंगी। एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्धा से पूछा कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, और बुद्ध ने कहा सूर्य की ओर इशारा करते हुए कि उसे देखो, वह हर दिन उगता है फिर भी उसे उगने का अभिमान नहीं होता, और जब वो डूबता है तब भी उसे कोई भय नहीं होता। इसलिए मनुष्य का स्वभाव भी सूर्य जैसा होना चाहिए, ना उगने का अभिमान ना डूबने का भय। बड़ी अच्छी बात श्रोताओं बुद्ध ने हमें कही है, और इस बात को अगर हम समझ लें तो हम अपनी ज़िंदगी को बड़ी ही अच्छी तरीके से चला सकते हैं, निभा सकते हैं। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब लीजिए, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। ममता फिल्म का ये गीत है, सुमन कल्याणपुर, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।
1: फ्रॉम सारेगामा।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, थोड़ी सी बात करते हैं हमारे जीवन में हम लोगों को तनाव से बच के रहना चाहिए, और तनाव से बचने के लिए हमें हमारी सोच को सकारात्मक रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग या ऐसे दोस्त हमारे जीवन में होने चाहिए जिनसे बात करने पर हमें हमारी किसी भी परेशानी का हल मिल सके। और साथ ही श्रोताओं, जो श्रोता हमारे घर पर रहते हैं या दिन में अकेले रहते हैं, और अकेले रहने से बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, अपने दिमाग को खाली ना रहने दें, अपने आप को बिज़ी रखें, यानी कि सोच विचार ना करें, कुछ ऐसे काम करें जिन्हें करने से आपको अच्छा लगता हो। इसमें आपके जो शौक़ हैं वो आप ले सकते हैं, पेंटिंग का अगर आपको शौक़ है तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, बागवानी का अगर आपको शौक़ है तो आप बागवानी कर सकते हैं, फूलों के कई सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। बागवानी करके हम अपना मन भी लगाए रखते हैं और हमारा वक्त कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। जब हम मेहनत करते हैं श्रोताओं, चाहे वो हमने एक छोटा सा बीज ही क्यों ना डाला हो, जब वो धीरे धीरे उस मिट्टी से निकलने लगता है और हमें दिखने लगता है कि हमारा बीज बोया हुआ निकल रहा है, उसे देख देख कर हमें जो खुशी मिलती है वो बहुत बड़ी बात होती है। अपने आप को बिज़ी रखने के लिए हम लोग अपने घर पर रहकर भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें कर सकते हैं, अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं और अपना मन लगाए रख सकते हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि कोई भी ऐसी नकारात्मक सोच अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना आने दें और अपने आप को बिज़ी रखें, सोच विचार में ना पड़ें और ज़िंदगी को अच्छे से जीने की कोशिश करें, और जीना भी चाहिए। हंसिए और हंसाते रहिए। कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अभी आप सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला जिसका समय रहता है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हम आपका मनोरंजन ज़रूर करवाएंगे और सुनवाएंगे आपको एक और प्यारा सा गीत। लीजिए, इस गीत को सुनिए आपके अपने रेडियो सेट पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत। श्रोताओं, अब समय हमारा हमारे पास आज के कार्यक्रम के लिए कम है, तो चलते चलते बस आपसे यही कहेंगे, ज़िंदगी की राह में चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपका हौसला ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सकारात्मक सोच रखें, अच्छे कर्म करें और हर दिन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। साथी श्रोताओं, कार्यक्रम में जाते जाते अब आपको हम सुनवाएंगे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, गोलमाल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में। और इस गीत के साथ ही अब अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
7: Oh, shit!

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

0: टेस्टिंग और हाउसिंग सेंसर्स यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ दोस्तों, कार्यक्रम लेकर। कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ते हैं अपनी आरजी दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी दोस्तों, ढेर सारी जानकारियां हम लेकर आते हैं और आप तक जितनी हो सके उतनी हम पूरी गहराई से जो है उसी डिटेल में जानकारी को आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपके लिए एक तरह से वो हेल्पफुल हो सके। जिंदगी में आने वाली जो भी मुश्किलें हैं, खास करके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान आप आसानी से कर सकें और उससे जीत सकें, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो मैम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में हमारे प्यारे प्यारे से दोस्तों के साथ।
1: थैंक यू सो मच रुचिका
0: जी। तो मैम, अक्सर हम अपने आसपास की ही बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा बाहर क्यों जाना है, आसपास देखते हैं। युवाओं में आजकल, युवाओं की क्या, बच्चों की हम बात करें तो आजकल बहुत ज्यादा क्रेज है कहीं ना कहीं प्यार। प्यार शब्द जो देखने में सुनने में हमें बहुत ही प्यारा सा लगता है, और कहते भी हैं रिश्तों में प्यार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्यार के, बिना अपनेपन के जो है वो रिश्ते एक तरह से फॉर्मेलिटी के तौर पर हम निभा रहे होते हैं, मजबूरी के तौर पर हम निभा रहे होते हैं, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि नाम के लिए हम निभा रहे हैं, सोसाइटी को दिखाने के लिए। तो वहां पर अगर प्यार होगा, अपनापन होगा, तो शायद वो रिश्ते अच्छे से निभ सकते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, प्यार तो हर एक रिश्ते की अपनी एक जड़ है
0: जी।
1: अगर जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो पेड़ या पौधा कभी खड़ा हो ही नहीं पाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारे जो रिश्ते होते हैं, वो हमारे जो संबंध है, वो प्यार से ही पनपते हैं, प्यार से ही उनका नर्चरेंस होता है। तो प्यार तो हर जगह है, जैसे कहते हैं कि ऊपर भी प्यार है, नीचे भी प्यार है, हर जगह प्यार ही प्यार है।
0: जी, दुनिया ही प्यार से चल रही है। और खास करके प्यार की हम बात कर रहे हैं मैम, तो अक्सर बात करें कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं हम खुद से ही प्यार करना भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है?
1: क्योंकि पहले तो हमें किसी ने बताया नहीं होता है कि हमें खुद से भी प्यार करना है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: हमने हमेशा पिक्चरों में या अपने आसपास के लोगों से, उनके व्यवहार से यही देखा और यही समझा है कि हमें दूसरों को प्यार देना है। दूसरे को प्यार देने का क्या अर्थ है? दूसरे को प्यार देने का अर्थ है कि उनकी जो ज़रूरतें हैं हम वो पूरी करें। अगर जूता चप्पल चाहिए तो हम उसको जूता चप्पल दें, अगर उसको मोबाइल फ़ोन चाहिए तो हम उसे मोबाइल फ़ोन दें, अगर उसको नए कपड़े चाहिए तो हम उसको नए कपड़े खरीद के दें, या उसको भूख लगी है, खाना खाना है, तो हम उसको खाना बना के दें। व्यक्ति अपने घर में, अपने परिवार के बीच में, या अपने दोस्तों में, या जिसे हम लोग पिक्चर देखते हैं, उन सब में वो यही देखता है कि प्यार का अर्थ तो सिर्फ इतना ही है। तो वो गिफ्ट्स में या फिर इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाता है कि अगर मुझे किसी चीज़ के रिक्वायरमेंट है तो मैं उस चीज़ को करने से पहले मैं सामने वाले की नीड्स को फुलफिल करूँ। लोग इसको ही प्यार समझते हैं और ऐसा ही चलता जाता है। कभी किसी ने बताया ही नहीं होता कि असल में प्यार का मतलब है क्या और खुद से प्यार करने का अर्थ क्या है।
0: जी बिल्कुल सही कहा मैम ने, क्योंकि हमें अक्सर ऐसा, हमें दूसरों पर डिपेंड रहने की आदत हो गई है कि कोई हमें बताएगा, कोई हमें बोलेगा, तब हम किसी भी काम को अपनी जिंदगी में करेंगे। लेकिन हम अपने आप को अंदर से झांकने के लिए एक थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाते हैं, या तो खुद को समझ ही नहीं पाते।
1: बिल्कुल, देखिए इसमें एक चीज है जो हम सबके साथ बहुत ही आम तौर पे होती है, और ये सब व्यक्तियों के साथ ऐसा हुआ है। जब हम छोटे होते हैं, जब एक बच्चा जीवन में आता है, तो हम, वो बच्चा अपने आप को दूसरों के नजरिए से ही देखना शुरू कर पाता है। जैसे बच्चे को बताया जाएगा कि उसका नाम क्या है, बच्चे को बताया जाएगा कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसको किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है, उसे सामने वाले को कैसे संबोधित करना है। यानी बच्चे के पास अपनी खुद की तो चॉइस होती ही नहीं है। बच्चा तो हर वो चीज कर रहा होता है या करने का चेष्टा रखता है, प्रयास करता है, जो उसके बड़े उसको परिवार में बताते हैं या सिखाते हैं या समझाते हैं। तो आम तौर पे, स्वाभाविक तौर पे क्या होता है कि हर व्यक्ति जीवन को देखने का नजरिया और खुद को देखने का नजरिया, जो जिसको हम परसेप्शन बोलते हैं, वो सामने जो व्यक्ति हैं, जो परिवारजन हैं, जो हमारे सोशल इन्वायरमेंट में जो लोग प्रेजेंट हैं, उनकी सोच के आधार पर ही डेवलप होता है। तो यदि हमारे जो अपने हैं वो खुद इस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं जहाँ पर उन्हें खुद सेल्फ लव के बारे में नहीं आइडिया। तो बच्चे को खुद से कैसे पता चलेगा? ये अपने आप में एक समझिए एक प्रकार की डिस्कवरी होती है कि अच्छा हमें तो खुद से भी प्यार करना चाहिए, ये तो आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होती
0: जी।
1: तो इट्स लाइक जैसे कभी किसी ने अगर बॉल को देखा नहीं होगा तो उसको थोड़ी पता होगा कि बॉल से हम क्या क्या
0: क्या
1: कर
0: सकते हैं। बिल्कुल,
1: ये इस प्रकार की बात है। इसलिए हमने बोला कि ये तो एक प्रकार की डिस्कवरी है कि अच्छा सेल्फ लव भी कुछ होता
0: कुछ
1: है,
0: होता
1: हम
0: है।
1: कर सकते हैं कुछ।
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि आज के कार्यक्रम में हम क्या बातचीत करने वाले हैं। तो मैम क्यों ना आज थोड़ा सा हम प्यार को गहराई से समझें, और प्यार और रिश्तों में प्यार का क्या महत्व है असल में वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दिया कि आज का कार्यक्रम किस बातचीत पर निर्भर है और क्या खास बात रहने वाली है। तो जरूर आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं मन संवाद एक प्रयास मन की ओर और ये कार्यक्रम आप सभी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ
0: सुन रहे हैं। तो आइए दोस्तों अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही खास बातचीत हम कर रहे हैं प्यार, जो कि सुनने में और कहने में एक छोटा सा शब्द है लेकिन इसके बहुत मायने हैं हमारी जिंदगी में, जैसे आपका और हमारा प्यार। यही प्यार जो है यही हमें आपकी ओर खींच कर लेकर आता है आप सभी तक जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो ये प्यार तो हमेशा इसी तरह से बरकरार रहना चाहिए, पर खास बात कि हमें ये पहले पता तो होना चाहिए कि आखिर प्यार है क्या। तो क्यों ना मैम अपने दोस्तों को ये बताया जाए कि आखिर असल में प्यार क्या है, किसे हम प्यार कहते हैं।
1: आपने देखा होगा कि जितने लोग कहते हैं कि हमें प्यार है या हमने प्यार किया है या हमें प्यार हुआ था
0: जी,
1: वो सब काफ़ी दुखी भी हैं, काफ़ी निराश हैं, आधे से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत तनाव है। जबकि प्यार तो सबसे सुंदर मनोस्थिति का नाम है।
0: बिल्कुल,
1: प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, एक सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम जीते हैं, जो हम बन जाते हैं। तो जो लोगों को लगता है कि प्यार की वजह से उनके जीवन में कष्ट आया, परेशानी आई, तो ऐसे समझिए कि वो जो भी वो भाव था, वो भाव उनको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया।
0: बिल्कुल,
1: तो अगर वाकई में प्यार था तो असल में वो प्यार आपको आपके जीवन में आपको और ऊपर उठा रहा है, आपको एक बेहतर व्यक्ति बना रहा है, वो आपको अंदर से और प्योर कर रहा है। तो प्यार ऐसा है, उसका जो स्वभाव है प्यार का वो कैसा है, वो है प्योरिटी का। प्यार आपको प्योर कर देता है अगर वाकई में प्यार है तो। पर ऐसे बहुत से केसेस भी सुने होंगे, एक्स वाई जी पर्सन प्यार करता था, प्रपोज किया, लड़की ने मना किया, लड़के ने गुस्से में आके तेजाब फेंक दिया,
0: हाँ कुछ भी गलत कर दिया या
1: कुछ भी गलत कर दिया, ऐसे बहुत से न्यूज आते हैं। ये प्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिस मनोस्थिति से आ रहे हैं और वो जो डिसीजन या जो निर्णय ले रहे हैं उससे वो प्योर नहीं हुए, उससे उन्होंने सीखा नहीं। क्या हुआ, उनके अंदर का जो दानव था वो बाहर आ गया उल्टा
0: जी।
1: तो वो प्रेम नहीं था, प्यार नहीं था,
0: वो सिर्फ एक अट्रैक्शन बोल सकते हैं,
1: वो एक मोह था
0: जी।
1: हो सकता है लस्ट हो, लस्ट नहीं तो मोह तो डेफिनेटली था। तो देखिए प्रेम और मोह में बहुत बड़ा अंतर होता है। मोह आपको खराब रास्ते की तरफ ले जाएगा और प्रेम आपको प्योर करता चला जाएगा।
0: मैम मोह को हम कैसे, अगर बात करूं मैं कि थोड़ा सा डीपली इसको जानना चाहें तो हम उसे कैसे समझ सकते हैं। जैसे होता है ना कि हमें तो ऐसा लगता है कि हम तो प्यार में हैं, लेकिन हम उसे कैसे समझ सकते हैं कि हम मोह में हैं।
1: बिल्कुल, ये बहुत गहरी डीप इनसाइट से ये चीज समझी जाएगी
0: जी।
1: अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर वो इनसाइट नहीं है, वो जागरूकता नहीं है, तो वो नहीं पहचान पाएंगे कि वो प्रेम में है कि या मोह में। देखिए रिश्ते में तो हम सभी बंधे हैं, हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इवन जो ऑडियंस हम लोगों को सुन रही है, हम लोग और वो ऑडियंस, हम लोगों का भी कोई रिलेशन है।
0: बिल्कुल,
1: आप है, हम है, हम दोनों का भी कोई संबंध है। तो रिलेशन में तो हर कोई होता है, लेकिन वो रिलेशन का जो इंटेंट है वो क्या है। तो रिलेशन ऐसे समझ सकते हैं कि रिश्ते हमारे दो तरीके के होते हैं या दो चीजों पर आधारित होते हैं, एक हो गया प्रेम, दूसरा हो गया मोह। और अधिकतर या कुछ केसेस में कह सकते हैं कि रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसमें आप प्रेम भी देखोगे और मोह भी देखोगे, जहां पर व्यक्ति कभी कभी तो प्रेम की मनोभावना से, मनोस्थिति से ऑपरेट कर रहा है और कभी कभी वो मोह में भी फिसल जाता है। तो व्यक्ति यहाँ पर ऐसे रिश्ते में व्यक्ति क्या करने का प्रयास कर रहा है, एक बैलेंस क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है, अपने ऊपर काम करने का प्रयास कर रहा है। वो चेष्टा कर रहे, उसकी चेष्टा यही रहेगी कि मैं पुरानी गलती को रिपीट ना करूं, मैं एक बेहतर इंसान बनूं। तो ऐसा जो रिश्ता होता है, ऐसे रिश्ते में हम देखते हैं कि कैसे एक कपल है, वो अगर पहले फाइट्स होती थी, धीरे धीरे धीरे धीरे उनकी फाइट्स कम होती चली गई। तो यानी वो लोगों ने अपने रिश्ते पर काम किया, वो मोह से प्रेम की ओर अग्रसर हो चुके हैं। अब आपने बात करी थी दोनों में फर्क कैसे पहचानेंगे
0: जी।
1: तो देखिए मोह का जो स्वभाव होता है वो होता है कि मैं सब कुछ करूंगा। मोह जो है ना वो ईगो से निकलता है, वो अहंकार से आता है, अहम से आता है कि मुझे अहमियत मिलनी चाहिए। तो हमें अहमियत सामने वाले के जीवन में कैसे मिलेगी, जब हम उसके लिए कुछ करेंगे। और जब हम यही बार बार याद दिलाते रहेंगे कि हमने कुछ
0: किया है, सही बात है, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है
1: आदत
0: एक तरफ से करना और दूसरी तरफ से जताना,
1: तो लोग यहाँ पर ही इसी इल्यूजन में ही फंस जाते हैं और ये नहीं देख पाते कि वो प्रेम की भावना से नहीं कह रहे हैं, वो तो मोह की भावना से कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो अपेक्षा आ गई ना। तो मोह का एक और स्वभाव है, वो सिर्फ अहम नहीं रखता, वो अपेक्षा भी रखता है। अब मोह बोलता है तुम्हें जो चाहिए बताना, मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो मेरे पास आना। तो इस तरह के रिश्ते में कौन महत्व बन रहा है, किसकी महत्वपूर्णता बढ़ती जा रही है, जो उस व्यक्ति ये बात कह रहा है उसकी,
0: बिल्कुल
1: करेक्ट है ना। तो उस व्यक्ति का जो अहम है वो बढ़ता जाएगा और वहीं से फिर अपेक्षाएं भी आएंगी, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं इसके लिए वो कर रहा हूँ, कभी ऐसा होगा मुझे जरूरत होगी तो ये मेरे साथ होगा। और फिर ऐसा वक्त आया जब उनको जरूरत थी किसी व्यक्ति की और वो व्यक्ति लेट से नहीं था उनके साथ, तो क्या कहेंगे, मैं तो बहुत निराश हो गया, वो व्यक्ति मेरे साथ था ही नहीं।
0: जी,
1: रिश्ते में ये बात तो एकदम सही है कि रेसिप्रोकेसिटी होनी चाहिए, जितना हम करें उतना आप भी करें, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो मोह से आ रहा है कि प्रेम से आ रहा है। अगर प्रेम से आ रहा है तो हम सफरिंग से बहुत दूर रहेंगे, पर अगर मोह से आ रहा है तो हमें सफरिंग होगी, क्योंकि अहम हमें जीने नहीं देगा ना।
0: जी,
1: हमारी अपेक्षाएं हैं, अपेक्षा का स्वभाव है वो टूटने का, अपेक्षा का स्वभाव ही टूटने का है। जहां अपेक्षा जुड़ी, जिस भी रिश्ते में, जिस भी व्यक्ति के साथ, जिस भी कर्म के साथ, लोगों को अपेक्षा सिर्फ सामने वाले के बिहेवियर पे या एक्शंस पर ही नहीं होती, अपने कर्मों से भी अपेक्षा होती है। तो उनका जो मोह होता है वो सिर्फ दूसरे व्यक्ति के प्रति नहीं होता, उनका मोह अपने कर्मों के प्रति भी हो जाता है। मोह इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है, इतनी खतरनाक,
0: जो अनहेल्दी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमें अट्रैक्ट कर ही लेती हैं और बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं और हम हो भी जाते हैं, लेकिन खैर जिंदगी है
1: ये। देखिए, इसके पीछे भी कारण है ना। भगवान ने हर चीज दो रूप में बनाई, दिन रात, सही गलत, न्याय अन्याय,
0: बिल्कुल
1: सब कुछ इसी इसी दुनिया में ही एग्जिस्ट करता है ना। और हम सब इस चीज के भागीदारी भी हैं और भोक्ता भी हैं, और हम लोग चाहते भी हैं कि हम लोग इससे ऊपर भी उठें। हर चीज इकट्ठा एग्जिस्ट कर रही है ना। ईश्वर ने दुनिया बनाई ही ऐसी है, जहाँ आग है वहाँ पानी भी है, सूखा है अकाल है वहां पर फ्लड भी है।
0: जी बिल्कुल,
1: इसको बोलते हैं डुअलिटी, डुअलिटी नेचर। आप ऐसे देखिए कि जहाँ प्रेम है वहां मोह भी है, जहाँ देवता है वहां राक्षस भी है।
0: बिल्कुल,
1: आप समझ रहे हैं, दोनों का अपने आप में बहुत गहरा, उनका अपना अस्तित्व है, उनका अपना एक महत्वता है एग्जिस्ट होने की, अपना सिग्निफिकेंस है इस जीवन में एग्जिस्ट करने का। और वो क्या है, वो ये है कि हम इन दोनों को देख सके और इन दोनों से ऊपर उठ सके। वो कैसे उठेंगे, जब ऊपर उठेंगे इन चीजों से, अपने ऊपर काम करके ही उठेंगे।
0: बिल्कुल,
1: अपने सोच, अपने
0: खुद के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो फिर कैसे उठेंगे।
1: मोह इसीलिए होता है जिससे हम प्रेम की ओर जा सके, जिससे हमें प्रेम के बारे में, प्रेम की जो महत्वता है हमें उसका एहसास हो सके। हम जिस दिन हमने अपना जीवन को प्रेम की तरफ अग्रसर कर लिया, उस दिन से हमारा जीवन और ज्यादा सुंदर होने लगेगा, हम और ज्यादा प्योर होने लगेंगे। पर ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, ये हम कब सीखेंगे, तब ना जब हम मोह में पड़ेंगे,
0: ये खुद पे काम करेंगे,
1: सफरिंग होगी,
0: बिल्कुल
1: हाँ, दुख होगा, रोएंगे, चार महीने रो के निकालेंगे, फिर समझ में आएगा नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, बाद में जाके डिस्कवर करेंगे अच्छा प्रेम भी तो कुछ है। जिसको हम प्रेम सोच रहे थे आज तक, वो असल में प्रेम तो था ही
0: नहीं,
1: वो तो मोह था। और वहीं से हमारी एक नई जर्नी की शुरुआत होती है।
0: जी बिल्कुल, तो दोस्तों आप सभी ने जाना कि मोह और प्रेम में किस तरह से अंतर रहता है, और असल में हम जीते प्यार में ही हैं, लेकिन कब मोह में चले जाते हैं ये हमें पता नहीं चलता है, तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल एक चलते हैं एक गीत की और फिर से वापस आते हैं अपनी इस बातचीत

0: दोस्तों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं मन संवाद। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत को और आगे की ओर लेकर जाते हैं और समझते हैं आखिर प्यार क्या है। तो मैम, अक्सर आजकल क्या हम सुनते हैं नॉर्मली चीजों को कहते हैं कि प्यार में जहाँ प्यार होता है वहाँ खुशियाँ होती हैं, वहाँ अपनापन होता है और रिश्ते बहुत अच्छे से निभते हैं, बहुत अच्छे से उन्हें हम निभाते भी हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ रिश्तों में प्यार होने के बावजूद भी वो दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों होता है?
1: देखिए, ये तीन अलग अलग चीजें हैं, इनको बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं
0: जी।
1: रिलेशन जो होता है, रिलेशन में रेसिप्रोकेसिटी, यानी कि हम जैसा कर रहे हैं सामने वाला हमको हमारा भी ध्यान रखे, ये नहीं कि सिर्फ हम ही ध्यान रख रहे हैं। तो वो अगर ऐसा है कि एक ही व्यक्ति ध्यान रख रहा है और दूसरा व्यक्ति नहीं ध्यान रख रहा, तो ऐसा रिश्ता जो है वो इम्बैलेंस्ड है, उसमें बैलेंस नहीं है। यानी रिश्ता वो सही है जिसमें बैलेंस हो। अब जैसे दिन और रात का रिश्ता है,
0: बिल्कुल,
1: चंद्रमा और सूरज का रिश्ता है, बैलेंस है, दोनों एक दूसरे को अपना अपना समय देते हैं, कोई किसी को बिलिटल नहीं करता, कोई किसी को ये नहीं कहता रे चंद्रमा तो तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। सूरज को पता है चंद्रमा का अपना सिग्निफिकेंस है, चंद्रमा को पता है सूरज का अपना सिग्निफिकेंस है। दोनों में से कोई भी दूर होगा तो पृथ्वी नहीं चलेगी। ठीक इसी प्रकार से हर रिश्ते में, अब वो भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, या हस्बैंड वाइफ जो भी हो, हर रिश्ते में एक प्रकार का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सास और बहू का रिश्ते में भी, जैसे कि बहू अगर सास को इज्जत दे रही है, उनको प्यार दे रही है, उनका सम्मान कर रही है, ख्याल रख रही है, तो ठीक वैसे ही सास को भी अपनी बहू का सम्मान करना चाहिए, उसकी इच्छाओं को समझना चाहिए और उसको प्रेम देना चाहिए, केयर करनी चाहिए उसकी।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे में ही रिश्ता बैलेंस चल सकता है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम ही रहेगी। ये हुई बात रिश्ते की। अब बात आती है मोह और प्रेम की। मोह का अर्थ ये हो गया कि तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुमको दूंगा। अब कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो मोह पर आधारित होते हैं। अब आप खुद अपने जीवन में झांकी और आपको पता चल जाएगा कि आपके ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो इस प्रकार से बात करते हैं। तुम्हारे लिए मैंने कितना कुछ नहीं किया, उसके बाद मुझे क्या मिला? मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हें किसी प्रकार की चीज से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। यानी कि अपने बच्चे को एग्जाम्पल है, अगर हम बच्चे की और माँ की बात कर रहे हैं, तो यानी कि बच्चे का जो चरित्र है उसका निर्माण करने की बजाय हमने बच्चे को अपने ऊपर आश्रित कर लिया, डिपेंडेंट कर लिया कि बच्चे को कुछ भी चाहिए तो नहीं, मैं हूं ना, माँ है, माँ है तो बच्चे को करने की क्या जरूरत है
0: जी।
1: लोग इसको माँ का प्यार कहते हैं, पर असल में ये माँ का मोह है, प्यार नहीं। इसी प्रकार का एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको द्रोणाचार्य में नजर आएगा। महाभारत में जो द्रोणाचार्य थे वो अपने पुत्र अश्वत्थामा से कहते हैं बहुत प्रेम करते थे, उनकी भाषा में वो बहुत प्रेम करते थे। उनको था कि मेरा पुत्र को हर चीज मिले, मेरे पुत्र को सिंहासन मिले, जो मुझको नहीं मिला वो मेरे पुत्र को मिले। मेरे पुत्र ने बचपन में आटे को पानी में घोल कर पिया था, हमारे पास दूध नहीं था, तो मेरे पुत्र को अब वो हर चीज मिले जो उसको पहले नहीं मिली।
0: और ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स को जो चीजें नहीं मिली हैं वो कोशिश करते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए, पर हम बच्चों को उस चीज की कमी नहीं होने देंगे।
1: तो कमी नहीं होने देंगे, इसके लिए आप क्या करते हो? आप खुद पर काम करते हो ना, खुद से आप इतना पैसा कमाते हो, इतनी लक्ष्मी को आप अर्जित करते हो कि आप ध्यान रखते हो कि मेरे बच्चे को किसी चीज की कमी ना हो, क्योंकि मेरे बचपन में मेरे पास
0: वो चीजें,
1: मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे ये चीजें खरीदने के।
0: बिल्कुल,
1: मैंने अपनी ख्वाहिशों को मारा, मेरा बच्चा अपनी ख्वाहिश को नहीं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो एक सोच है, जो प्रवृत्ति है, ये मोह की प्रवृत्ति। फिर बात करते हैं प्रेम की। अब देखिए, अगर यहाँ पे द्रोणाचार्य को अपने पुत्र के प्रति अगर प्रेम होता तो वो क्या करते? द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को सक्षम बनाते, उसको सिखाते, उसको विद्या देते और उसका चरित्र का निर्माण करते। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके चरित्र का निर्माण नहीं किया। अश्वत्थामा के मित्र थे दुर्योधन और बाकी लोग, वो बहुत ज्यादा क्रूर थे, अच्छी चीजें नहीं करते थे, और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को मालूम भी थी कि ये जिनकी कंपनी में है वो लोग अच्छे नहीं है। वो हैं तो मेरे ही शिष्य, मेरे ही स्टूडेंट्स है ना। वो चाहते तो वो अपने बच्चे को समझा सकते थे,
0: बिल्कुल
1: बोल सकते थे कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए उसके लिए उनको कितना भी कड़क एक यू नो डिसीजन लेना पड़ता, जितना भी रिजिड डिसीजन लेना पड़ता वो लेते। क्यों जरूरी होता वो? क्योंकि बच्चे का निर्माण, चरित्र निर्माण करना जरूरी है। चरित्र निर्माण होगा तभी बच्चा या कोई भी व्यक्ति दिए हुए ज्ञान को, अर्जित करे हुए ज्ञान को सही तरीके से उपयोग में ला पाएगा। आपने एक ऐसे व्यक्ति को इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दे दिया जिसका चरित्र निर्माण नहीं हुआ, जिसके पास मैच्योरिटी नहीं थी, जिसको सही या गलत में डिफरेंस करना नहीं आता था। तो ऐसे व्यक्ति ने क्या किया? ऐसे व्यक्ति ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। जब महाभारत हुई तो उसने जो अभिमन्यु की जो पत्नी थी उनके कोक में जो बच्चा था उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तो यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र निर्माण नहीं हुआ हो और आप उसको अगर सारा ज्ञान दे दें जो आपने मेहनत से अर्जित किया था, तो ये आपकी विजडम से नहीं आ रहा, ये आपके मोह से आ रहा है। तो ये मोह का डिसीजन था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र के प्रति जो भी कुछ किया वो सब मोह में आके किया, प्रेम से नहीं। अगर प्रेम होता तो वो पहले चरित्र निर्माण करते और फिर डिसाइड करते कि मैं इसको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दूं या ना दूं। तो प्रेम क्या कहता है इसको समझिए। प्रेम कहता है कि मैं तुम्हारा चरित्र का निर्माण ऐसे करूं, भगवान मुझे इतना सक्षम करे कि मैं तुम्हारा चरित्र का निर्माण कर सकूं। मुझे ऊपर वाला इतना काबिल बनाए कि तुम्हारे जो जरूरत हो, जो तुम डिजर्व करते हो वो पूरी हो सके, वो नहीं जो तुम डिजर्व नहीं भी करते हो। भगवान तुम्हारी सुरक्षा करे, तुम अपने आप में इतने सक्षम बनो कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ और तुम अपना ख्याल स्वयं रख सको, तुम्हें सही गलत में डिफरेंस करने का विजडम आ जाए, भगवान अपनी कृपा तुम पर बनाए रखे। अब देखिए ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो वार्तालाप है, इसमें मैं नहीं है। इसमें मैं अगर आया भी तो एक माध्यम के तरीके से आया कि हम तो माध्यम है, भगवान करे हमें इतना सशक्त करे कि हम कुछ प्रदान कर सके। जी, तो इसमें भी हमने ऊपर वाले को याद किया, यानी कि हम अपना क्रेडिट नहीं ले रहे। क्रेडिट कब लेते हैं? जब हम ईगो से ऑपरेट करते हैं, यानी कि मोह से, क्योंकि मोह ईगो से जन्म लेता है, अहम से, वहीं से अहंकार, वहीं से आता है भय, वहीं से आती है इनसिक्योरिटीज, वहीं से आती है आशाएं, आकांक्षाएं जो हमें और चोट पहुंचाती है, और ये सब कारण है सफरिंग के। तो आप खुद देख लीजिए आपके जो आसपास के निजी जिंदगी में जो आपके खुद के रिश्ते हैं, वो रिश्ते किस पर आधारित है? प्रेम पर कि मोह पर?
0: बिल्कुल सही कहा मैम ने दोस्तों, यही फर्क हमें समझना है कि आखिर हम रिश्ते प्रेम से निभा रहे हैं या मोह से निभा रहे हैं। और बहुत ही अच्छी बात जो है मैम ने बताई कि हम क्या करते हैं बच्चों की जिद पूरी करने के लिए, या तो उन्हें किसी चीज की कमी ना हो, उनके बोलने से पहले ही हम चीजें प्रोवाइड करवा देते हैं, तो वो जो है एक तरह से हम उन्हें शय दे रहे हैं आगे क्राइम करने के लिए, क्योंकि छोटे हैं तब तो छोटी छोटी जिद है, जैसे बड़े होते जाएंगे तो वो जिद भी बढ़ती जाएगी, उनकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, तो कब तक पेरेंट्स उन्हें अपनी उंगली पकड़कर चलाते रहेंगे?
1: और बड़े होने के बाद यही वो बच्चे होते हैं जो अपने ही पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हमने यही चीजें देखी हैं दोस्तों, क्योंकि पेरेंट्स का यही मानना होता है, ये बहुत से केसेस हैं और जो भी हमें सुन रहे हैं वो इस चीज को रियलाइज भी कर पा रहे होंगे कि हम ऐसा सोचते हैं कि बस हमारे बच्चे, हमने बहुत दुख देखे हैं, तकलीफ देखी है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमने वो सिचुएशन फेस की है, वो दुख देखा है, वो तकलीफें देखी है, तो आज हम एक अच्छी जगह पर पहुंचे। अगर आज हम अपने बच्चों की वो फैसिलिटीज दे पा रहे हैं तो उसके लिए हमने मेहनत की है, तो हमें उन चीजों की वैल्यू भी है और एक तरह से हम उन्हें एक अपनी जिंदगी में उसकी समझ जो है वो बना पा रहे हैं। लेकिन वही बात है कि बच्चों को बिना मेहनत के सब कुछ मिलता जाएगा तो वो उस चीज की वैल्यू नहीं कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि हाँ, हर पेरेंट, हर व्यक्ति जो पेरेंट बनते हैं तब वो अपनी जिंदगी में, अपने करियर में इतना काम कर चुके होते हैं कि वो एक लाइफ को अच्छे से सपोर्ट कर सके, सिर्फ सपोर्ट नहीं, उसको बेहतरीन से बेहतरीन लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सके।
0: बिल्कुल,
1: और लोग प्रेम में ये चीज करते भी हैं, ठीक है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। ये पता होना बहुत जरूरी है पेरेंट्स को कि ये जो चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, अब बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अब इसको ओबीडियंस आनी चाहिए, अब इसको चीजों की वैल्यू पता होनी चाहिए, अब इसको मेहनत क्या होती है वो पता होना चाहिए। तो बच्चा किसी चीज को फॉर ग्रांटेड ना ले, बच्चा ना पेरेंट को फॉर ग्रांटेड ले, ना ना ही जो हेल्पर्स हों घर में उनको फॉर ग्रांटेड लें, ना ही जो वस्तुएं हैं, जो गाड़ियां हैं उनको फॉर ग्रांटेड लें, क्योंकि अगर हम वैल्यू नहीं इनकल्केट करेंगे बच्चों में तो वो कभी भी चीज़ों को, एक उनकी अहमियत जो होती है ना, वो कभी नहीं समझेंगे। और ये चीज़ सिर्फ वस्तुओं के साथ तक नहीं रहेगी, ये रिश्तों में भी आएगी,
0: इंसानों के साथ भी, बिल्कुल।
1: उनके दोस्तों की वो इज्जत नहीं करेंगे, उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे उनका वो अहमियत बिल्कुल नहीं समझेंगे, और यहाँ तक कि आगे चल के पेरेंट्स की भी अहमियत समझना छोड़ देंगे।
0: बिल्कुल, और जैसे आपने कहा मैम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो आजकल तो ये बहुत ही ज्यादा क्रेज है छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों की तो हम बात क्या करें, छोटे छोटे अभी 4th 5th क्लास में हो नहीं रहे हैं कि बच्चों को ऐसे कि नहीं गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड, और फिर एक भी नहीं दो दो या तीन तीन, उस तरह का समय जो है अब हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो धैर्य बच्चों में होना चाहिए जब वो छोटे हैं, तो वो मुश्किलें उन्हें फेस करनी चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: थोड़ा सा मुश्किल का समय उन्हें दिखाना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: कि असल में जिंदगी किस तरह से जी जाती है। तो वो जो धैर्य जब उनमें एक तरह से वो हैबिट होनी चाहिए वो नहीं बन पाती है, क्योंकि पेरेंट्स हर एक चीज प्रोवाइड करने में पूरी कोशिश करते हैं, चाहे जो भी है, खुद को तंगी देके उन्हें वो हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे, तो वो जो धैर्य है फिर वो आगे औरों की लाइफ के साथ भी वैसे ही करते हैं, क्योंकि फिर वो उनको वो आप जो कह रहे हो ना मैं वाली बात आ जाती है, अहम वाली बात की नहीं, तो वहीं से फिर वो जो आपने पहले भी कहा था कि ये मेरी है चीज तो मुझे चाहिए, या तो हम रिलेशंस की बात करें तो यहाँ पे मेरा रिलेशन है, क्योंकि हर कोई जो है एक तरह से कुछ आदत होती है कि टाइम पास के लिए, समझ नहीं होती है, मैच्योरिटी नहीं होती है, ये बोल सकते हैं, तो अट्रैक्शन मोह तो बढ़ जाता है, तो मोह में हमें नहीं पता कि हम किस और जा रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्या पता आगे वाला जो पर्सन है वो भावनाएं उसकी जुड़ चुकी हो, वो प्रेम में बंध चुका हो, तो फिर जो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं फिर एक तरह से रिश्ते टूटेंगे,
1: देखिए
0: इंसान टूटेंगे।
1: देखिए भाई, हमने बोला ना, जो व्यक्ति अगर वो उनको प्रेम हो गया है ना
0: जी,
1: तो भले ही वो टूटे, लेकिन वो टूटेंगे इसीलिए जिससे कि वो प्रेम
0: करते हैं या
1: मुक्त
0: हो सके, बिल्कुल।
1: प्रेम में इंसान बंधेगा नहीं, अगर प्रेम की शुरुआत में इंसान बंध भी जाए तो उसके जीवन में ऐसा तूफान आएगा ना, और उस तूफान से बाहर निकलने के लिए जो प्रेम उस व्यक्ति के मन में होगा वो उसको मुक्त कर देगा
0: जी, और यही स्टेज हमें क्राइम की ओर लेके जाती है, एक तरह से धैर्य वाली कमी। हमें धैर्य नहीं होता है तो हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं,
1: हम इम्पल्सिव हो गए ना,
0: बिल्कुल,
1: बच्चे को हर चीज तुरंत चाहिए,
0: तुरंत चाहिए, क्योंकि उसे मिल रही है,
1: मिल रही है, आपने उसकी आदत डाल दी, वही बात है, कंडीशनिंग हो चुकी है ना बचपन से,
0: बिल्कुल।
1: बच्चे को चॉकलेट चाहिए थी, आपने चॉकलेट
0: ला के,
1: बच्चा बड़ा हुआ उसको एक फैंसी सी वॉच चाहिए थी, आपने दे दी,
0: बिल्कुल, क्योंकि बच्चों में एक तरह से मैम दिखावा एक होता है ना, फ्रेंड सर्कल को देख के कि मेरे फ्रेंड के पास साइकिल है तो मुझे भी महंगी वाली साइकिल चाहिए,
1: देख
0: कल को स्कूटी आएगी,
1: डेफिनेटली
0: स्कूटी की हो जाएगी,
1: एंड दिस इज समथिंग जो बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं,
0: अपने घर से,
1: घर से, बिल्कुल
0: बिल्कुल सही कहा मैम ने, और हमारी वर्डिंग भी मैच हो गई है, तो सच में ये बातें हम रियल में देखते हैं, और पेरेंट्स से हम एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भले ही आपने कितना भी मुश्किल समय देखा है तो ये मत सोचिए कि बच्चों को वो समय ना देखने को मिले, क्योंकि वो समय को देखेंगे तभी वो चीजों को और अपनी जिंदगी की अहमियत को समझ पाएंगे,
1: बिल्कुल,
0: खास करके अपनी वैल्यू को समझ पाएंगे,
1: डेफिनेटली। देखिए, आपको चीजों को ना बहुत एक्सट्रीम में लेके जाने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर आपने सफरिंग को एक्सट्रीम में देखा है और इसलिए आप सोच रहे हैं कि आप बच्चे को हर सुख सुविधा प्रोवाइड करेंगे एक्सट्रीम में, तो ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि बच्चा आपकी तरह तो बिल्कुल नहीं बनेगा, वो आपका अपोजिट बन जाएगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत जिम्मेदारियां लेते हैं, जो समझदार हैं, जो वाइज हैं, तो आपका बच्चा आपसे एकदम अपोजिट बन जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने जैसा जीवन जिया है ना, आपने अपने बच्चे को उसका एकदम अपोजिट जीवन दिया है, एकदम सुख सुविधाओं से भरा हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे को सुख सुविधा मत दीजिए, जरूर दीजिए, बच्चा डिजर्व करता है
0: जी,
1: आपका हर व्यक्ति का अगर प्रेम भी है तो प्रेम में भी इंसान यही सोचेगा कि सामने वाले को कोई कष्ट ना पहुंचे,
0: बिल्कुल,
1: तो ये भाव तो एकदम सही है, लेकिन इसकी जो एक्सट्रीमिटी है वो ठीक नहीं है, तो यानी कि आपको क्या करना है, आपको एक बैलेंस मात्रा बना के चलनी है, आप बच्चे को जीवन के जो प्रॉब्लम्स है ना, आप बच्चे को उनसे वंचित नहीं रख सकते, बच्चे को पता होना चाहिए, और जितना ज्यादा बच्चे को ये माँ बाप के थ्रू पता चले या टीचर्स के थ्रू पता चले कि लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी ज्यादा सफरिंग है, तो उतना ही ज्यादा बेहतर होता है। अब जैसे भगवान बुद्ध थे, तब वो राजकुमार सिद्धार्थ थे,
0: जी
1: तब उनके पेरेंट्स ने क्या किया, उनके पेरेंट्स ने हर चीज से उनको वंचित रखा, छुपा दिया कि पैलेस में आप छुपे रहो, महल में बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर निकलोगे सफरिंग देखोगे। इसकी तो ज्योतिषवाणी हुई थी कि अरे ये तो बन जाएगा सन्यासी, तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। अगर उन्होंने पहले से ही सफरिंग के बारे में धीरे धीरे बताया होता, समझाया होता, उसके साथ मिलकर, बच्चे के साथ मिलकर काम
0: किया होता
1: कि लोगों के जो दुख है उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, अगर बच्चे को शुरुआत से ही इन्वॉल्व करके बच्चे को सिखाया होता, तो हो सकता है उनको ये भाव ही नहीं आता कि मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लेना चाहिए। हो सकता है, बिल्कुल
0: हो सकता है। और जब
1: वो
0: तक
1: महल में रह कर भी तो संन्यास जीवन का पालन कर सकते थे,
0: कर सकते
1: वो राजा बन के भी कितनी चीजों को, कितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते थे, कितने लोगों का वो सत्कार कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन ये चीज कैसे हुई, पेरेंट्स ने बोल दिया आप महल के अंदर ही रहो, बाहर नहीं जाओगे। और तब जब उन्होंने सफरिंग देखी, फिर क्या हुआ, क्योंकि पेरेंट्स ने एक्सट्रीम स्टेप लिया था, तब सिद्धार्थ ने एक्सट्रीम स्टेप लिया और वहां से उनकी शुरुआत हुई भगवान बुद्ध बनने की। ये कहानियां जो है ना, ये क्यों बता रहे हैं आज के इस कॉन्वर्जेशन में, इसीलिए जिससे कि इन कहानियों का महत्व आप समझे। ये कहानियां हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कारों में यूं ही नहीं है, ये इसलिए है जिससे हम इनसे कुछ सीखें। और क्या सीख दे रही है ये, भगवान बुद्ध ने तो जो भी मैसेजेस दिए हैं वो सब तो बहुत अच्छे नोबल ट्रुथ्स माने जाते हैं, है ना, बहुत लाइफ लेसन्स उन्होंने दिए हैं, परंतु इनसे और भी चीजें हैं सीखने की। इनसे सीखा जा सकता है कि क्यों पेरेंट्स को एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए, क्यों पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बच्चे को बचा के रखेंगे तो बच्चा ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पेरेंट्स ने, जो सिद्धार्थ थे उनके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने मोह से काम किया ना, उन्होंने मोह से ऑपरेट किया।
0: बिल्कुल,
1: अगर उन्होंने प्रेम से ऑपरेट किया होता तो वो बोलते इस ज्योतिषवाणी होने के बाद भी हमारा बच्चा जो चाहे वो बने, हम उसको प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे, बच्चे को बांध के रखना नहीं चाहते। देखिए यही बात है, मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता
0: मुक्त करता है। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो दोस्तों यही समझना हमारे लिए जरूरी है कि हम जो है बच्चों के साथ किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं,
1: बैलेंस बहुत जरूरी है।
0: जी, और बचपन से ही ये चीजें बच्चों में आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय ही बच्चा जो है कोरे कागज की तरह होता है, तो जैसे हम उसे ढालेंगे वो वैसे ही ढलेगा। लेकिन अगर हम यही बोलते रहते हैं कि अभी बच्चा है समझ जाएगा, अभी इसमें समझ नहीं है, तो वो समझ नहीं होते होते एक दिन बड़ा भी हो जाता है और फिर जो समय हाथ से निकल जाता है, तो इसलिए समय रहते जो है इन बातों को हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल समय रहते एक प्यारा सा गीत लेना भी बहुत जरूरी है, तो आइए दोस्तों चलते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: तो दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं मन संवाद अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और आज के कार्यक्रम में हम बहुत ही खास बातचीत कर रहे हैं। प्यार कितना प्यारा सा शब्द है ना ये प्यार, पर उतना ही खतरनाक भी है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो मैम, दोस्त हमारे भी ये अक्सर अपनी जिंदगी में देखते हैं और हम भी देखते हैं कि क्या होता है असल में बच्चों को आजकल। जैसे हमने कहा कि धैर्य तो ना पेरेंट्स में होता है ना बच्चों में होता है, वो चीज हम मिसिंग है कहीं ना कहीं। लेकिन कई बार हम ऐसी भी सिचुएशंस देखते हैं पेरेंट्स बच्चों को कहीं ना कहीं, या तो माना कि कोई हो गई नोकझोंक हो गई है बाहर, तो वहां पर ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं बोलना, चाहे कोई कुछ भी बोले कोई बात नहीं। लेकिन कई बार कुछ पेरेंट्स ऐसे भी बोल देते हैं कि अगर आपको कोई बोले तो आप बदले में चार बोल के आइए, कोई अगर आपको एक थप्पड़ लगाए तो आप दो लगा के आइए, क्योंकि आप जो है एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, अच्छी फैमिली से हैं, तो इमेज की बात है, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर किस चीज की कमी है, या क्या वो मतलब हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं?
1: देखिए, जब हम बच्चे को ये बताते हैं कि तुम्हें चुप रहना चाहिए था या फिर तुम्हें जवाब देना चाहिए था, तुम्हें अपना स्टैंड लेना चाहिए था,
0: जी
1: तो ये समझाना बहुत जरूरी है कि क्यों, और बच्चा ये बात कैसे समझे, इस उत्तर तक, क्यों का जो उत्तर है वहां तक कैसे आए, कि क्या रास्ता है कि मैं इस क्यों के आंसर तक पहुंच सकूं और ये जान सकूं कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए। तो ये चीज मिसिंग है, पेरेंट्स इस चीज को ध्यान नहीं दे पाते और उससे होती है कंफ्यूजन। तब पेरेंट्स को लगता है अरे हमने ही सिखाया था, हमसे ही गलती हो गई, क्योंकि अब तो बच्चा हम पर भी चढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: जहाँ उसे नहीं बोलना चाहिए वो वहां पे भी चार बातें सुनाकर रह जाता है।
0: जी,
1: तो ये प्रॉब्लम्स फिर इस तरीके से क्रिएट होती हैं। देखिए, वही बात है, नॉलेज हो तो पूरी नॉलेज हो, हाफ नॉलेज होने से हमेशा
0: प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल सही बात कही है दोस्तों मैम ने, कि जब तक हमें पूरा नॉलेज नहीं है तो हमें किसी भी बात की ओर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम मुश्किलों को घर बुलाते हैं, या तो ऐसे बोल लीजिए कि अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि हमें चीजों को समझना और पूरी तरह से समझना बहुत जरूरी है।
1: तो अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं उस वाई का उत्तर जानने के लिए वो 5 questions क्या हैं जो आपको चेक करने अपने साथ, वो 5 points क्या है। वो 5 points हैं, पहले आप ये देखिए कि क्या आपका जो मन है, आप स्वयं, आपका जो व्यवहार है, क्या वो प्रेम से आ रहा है। जो प्रेम यहाँ पर ऐसा है कि प्रेम मतलब करुणा है ना, कि वो करुणा के भाव से आ रहा है कि नहीं, आप करुणा में है कि नहीं है। फिर आप सोचिए कि आपका जो मनोस्थिति है या जो दृष्टिकोण है, जो भी सामने वाला व्यक्ति है या जिस भी परिस्थिति में आप हैं, तो वो जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण में न्याय कहाँ है, न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है और किसके साथ। अगर आप सामने वाले के साथ अन्याय कर रहे हैं तो यानी चुप रहना है, कुछ और बोलना है, माफी मांग लेनी है। पर अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको न्याय कैसे मिलेगा, न्याय के प्रति क्या आप निर्णय लेंगे, फिर आपको वो चयन करना पड़ेगा। तीसरा आपको सोचना है धैर्य, कि हम अभी धैर्य रख सकते हैं कि नहीं, हम धैर्य में हैं कि नहीं। अगर हमारे अंदर इम्पल्सिविटी है तो यानी कि तब रुक जाओ, तब डिसीजन मत लो, मन को शांत करने के लिए डिसीजन मत लो, शांत मन से डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा एक डायलॉग था, बहुत अच्छा डायलॉग था, हमें राइटर का नाम तो नहीं पता पर बहुत अच्छी बात थी उनकी। तो धैर्य होना चाहिए हमारे मन में, संयम होना चाहिए, चौथा पॉइंट है संयम, डिसिप्लिन में होने चाहिए। हम डिसिप्लिन या सिंसियरिटी में है या नहीं है उसको देख लीजिए, कहीं हमने अपने जो भी चीज हम कर रहे हैं, कहीं हमने अपनी लिमिट से ज्यादा तो नहीं कर दिया कोई चीज, हम अपनी लिमिट से बहुत ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ चुके हैं जिसकी वजह से परिस्थिति बन रही है, उत्पन्न हो रही है।
0: जी बिल्कुल।
1: और पांचवा है समर्पण। समर्पण किसके प्रति? समर्पण अपने ऊपर काम करते रहने के प्रति, समर्पण इस प्रोसेस के प्रति जो हमें हमसे मिला रहा है, समर्पण एक बेहतर व्यक्ति बनने के प्रति, समर्पण एक बेहतर समाज बनाने के प्रति। ये भाव, ये 5 भाव होने बहुत जरूरी। इन पांचों को देख लीजिए, क्या आप इन पांचों में स्थित हैं कि नहीं, बैलेंस है आपका इन पांचों में या नहीं। उसके आधार पे आपको पता चल जाएगा कि आपको सामने वाले के प्रश्न ने, प्रश्न को, या उसने जो भी कुछ आपको भला बुरा कहा है, आपको उसका उत्तर जवाब में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और ये भी समझ लो कि उसने जो उत्तर दिया है या जो भी जवाब दिया है, भला बुरा कहा है, वो क्यों कहा है। करुणा आ गया ना यहाँ पर, करुणा का भाव। आप एम्पेथाइज करोगे ना, आप समझोगे उसकी बात को, वो कहाँ से आ रहा है। तो करुणा सिर्फ खुद के प्रति नहीं करनी है, सामने वाले के प्रति भी करनी है। तो ऐसे करके जब ये पांचों चीजों को आप सोच समझ लोगे, तो आपको पता होगा कि आपको जवाब पलट के देना है कि नहीं देना, या माफी मांग लेनी है। इससे आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी।
0: जी दोस्तों, तो मैम ने बताया कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि पांच फैक्टर्स आपको बताए, पांच पॉइंट्स आपको बताए, जिसकी वजह से हम जो है ये समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिर हम कहाँ पर हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जानना और वैसे भी हमारे लिए बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि इस समय में हम कहीं ना कहीं खुद को भूल ही जा रहे हैं। हमें ये पता कि पड़ोसियों के घर में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता है। तो ये जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पड़ोसियों के कंपैरिजन में।
1: बिल्कुल।
0: पड़ोसियों के बारे में जानने के कंपैरिजन में खुद के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। तो मैम, समय हो गया है दोस्तों से अलविदा लेने का। तो दोस्तों, अगर इस आज बहुत ही खास बातचीत की है हमने, जो कि प्यार शब्द सुनने के लिए छोटा है और समझने के लिए बहुत गहराई से समझे तो
1: विशाल
0: बहुत बड़ा है,
1: है।
0: और उम्मीद करते हैं कि जो हमने बातचीत आज की है वो जरूर आप समझ रहे होंगे और अपनी लाइफ से उसे थोड़ा सा रिलेट भी कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि असल में हम सही में ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम गलत हैं या सही हैं। तो ये आपको समझने के लिए आसानी होगी। तो अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन है, कोई आपको डाउट है, अभी भी आपके दिमाग में चल रहा कोई प्रश्न चल रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं अपने उन सवालों के जवाब के लिए, और वो जवाब हम कोशिश करेंगे कि आप सभी तक हम जरूर पहुंचा सकें। तो हमारा नंबर रहेगा
1: 9354134057।
0: जी दोस्तों, तो ये नंबर आप सभी लिख लीजिए और जो भी सवाल है, जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रही है, वो जरूर हम तक पहुंचाइए। और अगर फिर भी आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें
2: अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए के अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
3: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
2: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगे। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डी के शिव कुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविधि सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दिया तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
7: Oh, shit!

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

291 दशमलव दो मेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों, आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने कंठ की।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
7: Oh, shit!

0: नमस्ते नमस्कार 91.2 MHz पर ए है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक ताशु तो रिश्तियां दी मिठास जिड़े से आंदे जीवन च बड़ी अहम भूमिका अदा करती है। प्यार कने एहसास, अगर प्यार कने एहसास दी अहां गल करिए ता रिश्तियां च सदा प्यार कने जेड़ा एहसास है से होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अहां प्यार कने अपने रिश्तियां च मिठास दिंदे न ता अहां दे जेड़ा रिश्ते न से हमेशा खूबसूरत जेड़े से लगते हैं, कने जेड़ा जिंदगी दा सफर है सभी बेहतर खास जेड़े से लगता है। ता पहले श्रोता अहां कने जुड़ चुके हैं करते हैं तिन कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते सभी जी,
0: स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: धन्यवाद
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला थी कने तुहां दा नां की है जी?
1: हां दाड़ी ते बोला वे
0: जी। दाड़ी
1: मेघनाथ
0: जी। मेघनाथ जी, क्या हाल चाल है दाड़ी वाले दे?
1: बहुत बढ़िया
0: जी। बढ़िया ही चाहिए ना जी?
1: हां जी हां जी।
0: नोई ताजी दाड़ी दी?
1: बस कुछ नहीं, हुण इलेक्शन लुक्शन हल्ला से हो गई है कने जितने वाले जीती है कने हारने वाले आ गए जी।
0: जी जी जी। ता मेघनाथ जी, तुहें क्या लगदा रिश्तियां च मिठास कने अपनापन होना कितना ज्यादा जरूरी है?
1: बहुत जरूरी है
0: जी, बड़ा ज्यादा जरूरी है ना जी।
1: आजकल कटी है सब
0: जी, कटी है ना जी। सहन शक्ति जेड़ा है हां जी बिल्कुल नहीं है ना जी।
1: अच्छे मतलब वधिया काम
0: जी जी।
1: हुण कहे साहब है भाई कोई काम जेड़ा करा रहे थे तुसी ने कोई गल बात नहीं
0: जी,
1: गल करनी लगे करना क्या ठीक रहेगा या नहीं
0: जी।
1: सच्चे दस्से मिली जाता सुझाव, लेकिन अजकल नहीं है। अजकल तो करी गई हवा भी दसा दे
0: जी। तो तुम्हें क्या लगता ये अपना पन जी जी
1: या कोई बड़ा है कोई छोटा है
0: जी?
1: चलो बड़ा करिएगा तो टाइम तो भी आएगा, छोटा करिएगा तो किस्त थोड़ी जी खटास बढ़ जाएगी
0: जी जी।
1: इसने इन्नी भाई सामने पूछा क्या
0: नहीं जी
1: है ना नहीं
0: जी जी।
1: हाँ
0: जी, अपनापन बड़ा ज्यादा जरूरी है ना जी। समझना भी जरूरी है ना जी।
1: जरूरी है बिल्कुल।
0: अगर अहां समझ गए ताई तहां तिना गल्ला बातां पर गौर करी सकदे ना जी।
1: ताई हो सकदा ना
0: जी,
1: अप्पू दी गल बात कर जे गल ताई पता लगदा
0: जी। ताई पता लगना जरूरी, कहां कुछ बोलना नहीं था अगला जेड़ा व्यक्ति है उस जो क्या पता चलना ना जी।
1: क्या पता चलना
0: जी जी
1: बिल्कुल
0: जी। ता मेघनाथ जी, आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनना पसंद करगी?
1: आज भजन सुनाई भी खरिया कमाल है या खोटिया
0: जी? खरिया कमाल है,
1: खानिया दो रोटियां
0: जी, खानिया दो रोटियां जरूर। हाँ जी, ये गीत तो हाँ तक पहुंचा दें जी। चुनने वास्ते धन्यवाद जी, तो हाँ दा
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी कर देन गल बात। हेलो
2: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
2: और जी ठीक ठाक है ना?
0: जी ठीक ठाक है जी, तुहां ठीक ठाक है ना?
2: हां जी ठीक है जी
0: जी। अपना नाम दसी दिया कने कोहा जगह दे रहने वाले ने जरूर दसी दिया जी।
2: मेरा नाम तारा चंद है कने दाड़ी दा रहने वाला जी।
0: जी तारा चंद दाड़ी दे रहने वाले जी, क्या हाल चाल है दाड़ी वाले दे, क्या काम कार छेड़े तो? हाँ
2: बहुत दाड़ी वाले दे हाल बढ़िया ने, गर्मियां पियां पखे लगे
0: जी, गर्मियां पियां पखियां दा जेड़ा नजारा है से लै देना सी।
2: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल
0: जी। तारा जी तुहें तो क्या लगता रिश्तियां च मिठास होना कितना ज्यादा जरूरी है, या रिश्तियां च अपनापन कितना ज्यादा जरूरी है?
2: रिश्तियां च मिठास होना तो जरूरी है, पर सह मिठास रही है नहीं था
0: जी
2: दिल।
0: जी
2: एक आगे जाए तो दूजा सोचता पता नहीं क्या मतलब है इस दा तां वदा आगे
0: जी, तो
2: इस करके सारे किनारा कर दिए आजकल
0: जी। चलो सभी ठीक है कि तो हाँ ये आगे कोई बड़ा दे या आगे कोई जात है तो हर कोई अपना अपना सोच विचार रखता है ना जी।
2: हाँ जी सोचता पता नहीं
0: जी
2: कोई मतलब है ना वा कोई पर्सनल क्या था तां सारे ने ज्यादा ही पहाड़ी बोलदे बड़ा लमड़ू बोलता
0: जी जी जी। चलो सेता हर किसी दी अपनी अपनी सोच है ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी
0: पर अपनी तरफ ते हमेशा अच्छा करा, अगर हाँ अच्छा करना शुरू कर दे ना तो अगला जेड़ा व्यक्ति है सभी सोचने पर मजबूर हो जाता है ना जी।
2: हाँ जी सेता ठीक है ना, कई बार ऐसी स्थिति का खड़ी हो जाती कि जिससे बड़ी धीरे दूर हो जाती फिर मेरे
0: जी
2: मिठास तो रिश्ते च होना जरूरी है
0: जी, क्योंकि
2: मिठास नहीं होगी तो साड़ा निभा के नहीं आना, एक दूसरे ने मिलना जुलना नहीं होना
0: जी जी
2: जी,
0: जी क्योंकि हर जगह इंसान है, इंसान हमेशा गलतियां करता है क्योंकि इंसान जेड़ा है से गलतियां दा पुतला है एक ना जी।
2: हाँ जी
0: फिर भी अहां गलतियां ते ही सीखदे ना कि नहीं अहां ये गलती कीती है तो उना है यहां गलतियां ते सीख लेनी है ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी।
0: सर तो सोच विचार करना अहां दा काम है ना जी कि अहां किस हाँ प्रकार सोच देन या अपने हाँ रिश्तियां जो अहमियत दिन देन, अगर अहां हमेशा ये सोच देन नकारात्मक सोची करी चल देन तो अहां अपनी जिंदगी जो ना आगे बढ़ाई पान देन कने ना अपने रिश्तियां च मिठास जेड़े से लाई पान देन ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी फिर रिश्ते दूर हो जांदे ना
0: जी, दूर हो जांदे अकेलापन जेड़ा है से अहां जो कुथी ना कुथी अहां दे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पौंदा, तनाव च अहां चली आंदे, बड़ियां सारियां जेड़ा दिक्कतां से दिखने जो मिलदियां ना जी फिर।
2: हां जी हां जी बिल्कुल।
0: तो इसते अच्छा अगर अहां अपने जो समय दिन दे न या अपने कन्ने मेल जोल रख दे न, समय ने तिना दी जेड़ा कदर है रिश्तियां दी से कर दे न तो कुथी ना कुथी अहां जो अच्छा फील होंदा है ना जी।
2: एक तो जी सारे रिश्तों के बीच मिठास के बीच कारण एक ना प्रॉब्लम आई है जो मोबाइल आई है ना बीच गब्बे
0: जी जी,
2: ये बड़ा रुकावट पाते ना सब अपने अपने लगे होंगे कोई दिखाता नहीं कुछ ने गल नहीं बात नहीं पाते बिजी रहते रहते सारे
0: जी। इस गल से भी मैं सहमत है कि मोबाइल फोन की तो हाँ गल की तो हर जगह अगर अहां बस च भी ट्रैवल करा दे ना तो अपने हाँ, आस पास दिख दे ना तो बच्चे ज्यादातर अपना समय जेड़ा है से मोबाइल फोन च दे दे या हेडफोन लगाए ना, कोई भी कुछ भी बोली करी चली आदा तिना जो पता ही नहीं चला था कि यहां जो क्या बोला दे क्या पर अगर कोई घर है आपस की फैमिली गल बात करा दी है तो उस बच्चे जो कुछ लेना देना नहीं है ना जी।
2: बिल्कुल नहीं लेना देना जी, वो अपने लगे जी, कोई बोला ठीक है खाने बोला दे हाँ ठीक है आ रहा हूँ कोई बात नहीं आप खा लो
0: जी जी
2: ऐसी रूल आई है ना
0: जी। तो पहले होता था कि मिली जुली करी खाना खाते थे पर इस खाने का थोड़ा देर सुकून मिलता था ना जी।
2: हाँ जी सुकून मिलता है ना, सारे टाइम में गेमा गुमा मोबाइल च नहीं होनी है देसी गेमा होनी है
0: जी, देसी गेमा जी तिना दा अपना ही अलग ही मजा होता था,
2: कोई चोर सिपाही खेल ले रहा कोई डंडा गुल्ली खेल ले
0: जी,
2: फिर कोई
0: ऐसा होनी है होता है।
2: ਲੁਕਾ ਛੁਪੀ ਆ
0: ਜੀ ਜੀ।
2: ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸਟੱਪ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਹਿ ਗੇਮਾਂ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ
0: ਜੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਆਹਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਜੋ ਛੁਡਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
2: ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ ਪਬਜੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਰਜਾਈਆ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲ ਪਾਈਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਾਰ
0: ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਅਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟਦਾ ਅਗਰ ਅਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਨੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਅਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਾਂ ਜੋ ਦੁਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਬਾਨ ਕਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਹੈ ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਅਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਸ ਗੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ये तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहा सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत, प्यारी दे शुरुआत। शुरुआत अहां इस गीत कने कीती है, कने फिर ते अहां वापिस अपनी जेड़ा गल बात है से लेकरी तुहा तक पहुंची है न, कने तुहा सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ी होने न। रिश्तिया च मिठास होना कितना ज़्यादा जरूरी है से तुह सारे जो ही पता है। रिश्तिया च व्यवहार कने जेड़ा अहां दी जुबान है से अगर अहां अच्छी रखते न, अच्छा व्यवहार अहां रखते न, तो कुछ ना कुछ से अहां दे जेड़ा रिश्ते न से हमेशा सफलता दी ओर जाते न। हर कोई ये सोचते है कि जिंदगी जेड़ा है से छोटी देई है, छोटी देई जिंदगी च अहां किस प्रकार अपने जेड़ा रिश्ते न तिना दी अहमियत समझते न। जिंदगी दा जेड़ा सफर है ना से अहां वास्ते बेहतर खास है, पर अहां किस प्रकार अपनी जिंदगी दे सफर जो बेहतर बनांदे न। जवान अगर तुहां अच्छे शब्द जेड़ा न से अपने अंदर रखते न, अगले व्यक्ति जो अच्छा बोलते न, सकारात्मक जेड़ा विचार हैं से अपने अंदर रखते न, तो अगला व्यक्ति भी अपने अंदर जेड़े से सकारात्मक विचार जेड़े से ज़रूर रखता है। जुबान पर अगर हाँ मिठास लेकर आते न या मीठा बोलते न, तो से हमेशा अच्छा लगता है, कने अगर हाँ कड़वा बोलते न तो से कुछ ना कुछ अहां दे चेहरे दी जेड़ा स्माइल है उस जो जेड़े से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर अहां हमेशा कड़वा बोलते न या नकारात्मक विचार अपने अंदर रखते न, तो कुछ ना कुछ से अहां दी जिंदगी दे सफर पर प्रभाव जेड़े से ज़रूर पाते न। तो अपनी जेड़ा जुबान है से हमेशा मीठी रखा, जिन्हें कि अगर कोई भी फल है से मीठा होंदा है तो अहां जो अच्छा लगता है, कने सही अगर थोड़ा दिया खट्टा होंदा है तो अहां हमेशा उस फल दी जेड़ा है से बुराई करना शुरू हो जाते न। अगर अहां अपनी जिंदगी च अच्छा करते न, सफलता दी ओर जाते न, तो हर कोई खुश होंदा है। फैमिली दी गल करिए तो से तो हमेशा बच्चों का जेड़ा सपोर्ट है से करती है, से अपने बच्चों जो हमेशा हौसला जेड़ा से दिंदी है कि नहीं तो हाँ अपनी जिंदगी च सफलता भी हासिल करनी है कने आगे भी बढ़ना है। अगर बच्चा थोड़ा दिया भी अपने सफलता दी ओर रुक जाता है तो फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चे जो हमेशा अच्छे विचारा कने आगे बढ़ने दी जेड़ा प्रेरणा है से जरूर दिंदे न। तो अच्छा जेड़ा व्यवहार है सभी होना हाँ वास्ते जरूरी है। अपनापन रिश्तिया च अपनापन जेड़ा है से सबसे ज़्यादा ज़रूरी रखता है। अपनापन अगर हाँ कोई भी रिश्ता है, चाहे से भाई बहन का रिश्ता है, चाहे माता पिता का बच्चों कने रिश्ता है, किस प्रकार हाँ रिश्तिया की अहमियत समझ देना या अपनापन जेड़ा है से रिश्तिया अंदर रख देना। जालू हाँ अपने अंदर अपना जेड़ा पन रख देना तो कुछ ना कुछ ये रिश्ते हाँ जो जेड़ा है से हमेशा कुछ ना कुछ सिखाई करी जान देना। तो श्रोताओ तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ी सकते, कने अहां कने गल बात जेड़ा है से जरूर करी सकते। गल बात करने वास्ते जेड़ा अहां दा नंबर है, पहले तो तुह सारे ही उस नंबर जो नोट करा, फिर ही उस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। तो नंबर है 701-811-7091। नंबर तुह तक जेड़ा है से पहुँचाईता है, कने चल देना फरमाइश दी ओर, सुन देने सा प्यारी दिया फरमाइशा जो तुह सारे भी इंजॉय करा।

0: अच्छा लगता है ना जी।
1: हाँ जी, अजकल तुम्हें पता ही है
0: जी
1: कई प्यार भावना आई नहीं रही है, उसी दी पेड़ में रिग गयो।
0: जी जी पर से
1: आप
0: पर
1: आहां तक लान दे वे यहाँ, अच्छे बन के रही है, मिठे
0: जी
1: बन के रही है, जड़ी
0: अगर
1: मिठी जबान होंगी खरग लांगे सही जाने।
0: जी जी कने अगर हाँ खुद ते शुरुआत कर देना तो हर चीज अच्छी लगती है ना जी।
1: हाँ जी
0: कने अगला व्यक्ति है उस जो भी प्रेरणा दें दे ना तो सभी कुछ ना कुछ जरूर
1: हाँ जी
0: सीखता है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी तभी ना जी आज तो हाँ कुंदिया गीत जिड़े से सुनना पसंद करगी
1: सुनाई दी है कोई
0: जी।
1: अपनी पसंद आवा,
0: जी मेरी पसंदा दा सुनने की तोहों दिया पसंदा दा गीत आहा तोहों तक पहुंचाई देना।
1: बड़ी पसंद आ सुनाई दी है कोई पहाड़ी।
0: जी जी जरूर जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तोहों दा
1: हाँ जी तुहाड़े भी
0: जी।
1: धन्यवाद जी।
0: ए है तोहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला। अगले जिड़ा श्रोता ने सभी यहाँ करने जुड़ चुके हैं ने कर दें तीना करने गाल बात। हेलो
1: हेलो, नमस्ते
0: हेलो, नमस्ते जी।
1: जी।
0: जी स्वागत है जी तोहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
1: थैंक यू, ठीक ठाक है।
0: जी। तोह कुथु ते बोला दे कने तोहंदा ना क्या है जी।
1: रक्कड़ ते बोला दी जमुना देवी, गाना
0: जी
1: सुनना
0: जी जमुना जी
1: भजने
0: कुंदिया गाना सुनना है जी तो हाँ
1: गुणे वाली माता का भजन।
0: जी। गुणे वाली माता दा भजन सुनना है
1: हाँ जी
0: जरूर तोहंदी जेड़ा फरमाइश है से तोह तक पहुंचान दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तोहंदा
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: जी। 92.2 MHz पर ये है तोहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अगले जेड़ा श्रोता ने सभी जुड़ी चुके हैं ना तिना ते भी पूछ देना से कोहा जगह दे रहने वाले ने कने तिना दा ना क्या है। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो नमस्ते जी।
1: ओके जी।
0: जी स्वागत है जी तोहों दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
1: धन्यवाद जी।
0: जी तुहां कुहा जगह दे रहने वाले ने कने तोहों दा ना क्या है जी।
1: हां जी, आहां कंडी ते बोला रही जी।
0: जी कुथू ते
1: कंडी ते। हां
0: कंडी ते।
1: जी हां जी।
0: जी क्या हाल चाल है कंडी वाले दे जी।
1: बस ठीक ठाक जी, तो हाँ सुना।
0: जी यहाँ भी ठीक ठाक है जी। तो हाँ अपना नाम भी जरूर दस दिया जी।
1: हां जी, मेरा नाम सुमायर है।
0: जी क्या काम कार तो हाँ छेड़िया क्या करा दे कंडी वाले।
1: क्या करना, राम करा रहे इस टाइम।
0: जी इस टाइम राम करने दा ही समय है ना जी। दोपहर दा समय थोड़ा दे आराम करने दा होंदा ना जी।
1: हां जी मैडम जी।
0: जी ता रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ रोज ही सुन दे कार्यक्रम।
1: हां जी हां जी हां जी, डेली सुन दे
0: जी कदे लग दे तो हाँ जो कार्यक्रम।
1: बड़ा अच्छा लगता जी,
0: जी ता आज
1: बड़ा
0: हाँ
1: प्यार है।
0: जी आज हाँ गल बात करा दी ना कि रिश्तियाँ च मिठास होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है तो है क्या लगता अपनापन। जी अच्छा इक्की दुए ने जेड़ा व्यवहार है से अच्छा होने ने रिश्तिया दी जेड़ा मिठास है से बढ़ी जाती है। जी ये भी सही पॉइंट है कि व्यवहार जेड़ा है से हर जगह अच्छा रखना हाँ वास्ते ज़रूरी है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जी चाहे छोटे
1: जी मिलते ना जी,
0: जी जी
1: जड़े बड़े ये श्लोक दिंदे ना इस रेडियो की शायद बड़ा ही बुरा व्यवहार कर देना
0: जी। अच्छा
1: हाँ से दुनिया दस देना
0: जी,
1: दिखावा कर दे से
0: जी जी
1: अपने परिवार ने से व्यवहार ही बुरा कर दे
0: जी। चलो हर कुसी दी अपनी अपनी सोच होंदी ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी, ये है ना कि रिश्ते जड़े ना ये बड़े अनमोल होंगे ना
0: जी। से ता मेरी सोच क्या है से तुह जो पता नहीं है ना जी। तुहंदी क्या सोच है से तुह जो पता नहीं है पर अपनी तरफ दे हमेशा अच्छा करा अपने दी जेड़ा अहमियत है से जरूर समझा ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: क्योंकि अपनापन अगर हाँ अपने अंदर रख दे न कने हमेशा अच्छा सोच दे न तो कुथी ना कुथी से जेड़ा
1: अपना भी अच्छा होंदा फिर।
0: जी जी अपना भी अच्छा होंदा
1: जी, अगर किसी की खुशी देख जे ताई खुशी मिलनी है
0: जी। अगर हाँ छोटे बच्चे की गल करिए तो छोटा दिया बच्चा है से सारे जो हसाई की चली आंदा है चाहे यहाँ कितना गुस्सा करना, चाहे कुछ भी करना, पर इस बच्चे जो ये नहीं होता कि अगला व्यक्ति गुस्सा करा दे या कुछ बोलना है, तो जो हमेशा हसाने दी होंगी ना जी।
1: हाँ जी
0: जी
1: मैडम जी, गाना सुनना है
0: जी। कुंडिया जी
1: गाना सुना दें जो, तो हाँ जोता जान दे मध्या
0: जी। कुंडिया आवाज कुछ कटी कटी ओदी तो हंदी।
1: हाँ जी
0: आवाज जिड़े से कुछ कटी कटी की ओदी जी तो हंदी।
1: जोता जोते लगे ना
0: जी। अच्छा जोते लगे ना।
1: जी
0: जी जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचांदे जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: धन्यवाद मैडम जी तुहंदा जी।
0: जी जी
1: ओके बाय
0: जी। तशो तो थोड़ा दे आगे बढ़ दे न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचांदे न।

श्रोताओं तो सारे ही सुनिया ये गीत ये फरमाइश दाड़ी ते फरमाइश अह जो आई हुए तिना दा ना वे तारा चंद तिना तक अहाँ ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया। इसी गीत कने अहाँ फिरी ते अपनी जेड़ा गल बात है से शुरू कर देने गल बात अह दी चली हुए रिश्तिया च मिठास होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मिठास ताई है जलो अहाँ अपना जेड़ा व्यवहार है से अच्छा रख देना या थोड़ा दिया सबर करना भी यहाँ वास्ते ज़रूरी है, थोड़ा दिया झुकना भी यहाँ वास्ते ज़रूरी है। हर चीज़ अहाँ वास्ते रिश्तिया च या दोस्ती दी अहाँ गल करिए दोस्ती का जेड़ा चुनाव है से अहाँ खुद ब खुद कर देना। अगर अहाँ स्कूल जाते न तो अपने जेड़ा दोस्त हैं से अहाँ खुद चुन देना कने इतना गहरा

रिश्ता आंदा जिहड़ा दोस्ता कन्नै बनी आंदा है से अहां पर निर्भर करदा है कि अहां अपने दोस्ती दा जिहड़ा सफर है से कल्लू तक निभांदे न या साथ जिहड़ा है से अपने दोस्तां दा दिंदे न। अगर अहां स्कूल ते बाद कॉलेज जांदे न तो कॉलेज भी अहां नए दोस्त बनांदे न, फिर अहां जिहड़ा है से घंटों अपने दोस्तां कन्नै गलबात करदे न, जिन्हें अहां अपनी जिंदगी दे सफर दी अगली पौड़ी चढ़दे न तो थोड़ा जिहा अहां अपने अलग अलग रिश्ते जिहड़ा से चुनी लैंदे न। फिर भी से यादा जिहड़ा से अहां जो हमेशा जोड़ी करी रखदियां न, चाहे से कॉलेज टाइम है चाहे से स्कूल टाइम है, से यादा अगर अहां कन्नै जुड़ी आंदियां न तो अहां जो बार बार याद जरूर आंदी है कि नहीं अहां अपना जिहड़ा कॉलेज टाइम दा समय है से इस प्रकार बीतया था, जलू भी अहां कोई गलबात छेड़दे न तो अहां जो फिर तेज से यादा जिहड़ा न तरोताज़ा जरूर जिहड़े से होई आंदियां न, चाहे से अपने कन्नै बिताइयां यादा न चाहे से कोई भी याद अहां जो जिहड़े से जरूर तरोताज़ा होई आंदी है। तो इसी कन्नै अगली जिहड़ा फरमाइश है से अहां पहुँचानी है खनियारे, तिन्हां दा नाम है वीना जी। बीना जी सुनने मेरी पसंद का गीत तिना तक पहुँचा देना एक गीत।

बोला देना रेडियो गुंचन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत रीला दा चढ़िया चाह रीले ही बनानिया हर टाइम हाँ जिड़े से मोबाइल फोन च दिन दे ना कने सोशल मीडिया पर कुथी ना कुथी बिजी जिड़े से रहते ना तो ये भी जिड़ा मोबाइल फोन का हाँ जिक्र करिए रिश्तियां च मिठास जड़े से इदिया वजह ने भी जड़े से कम दिखने जो अहां जो मिला दी हर टाइम अगर अहां मोबाइल फोन च अपना जड़ा समय है से लगांदे न तो कुथी ना कुथी जड़ा रिश्तियां च अपनापन अहां जो दिखने जो नहीं मिलता है समय दी कमी अहां जो दिखने जो मिलती है अपना जड़ा स्वास्थ्य है उसका ख्याल जड़े से अहां प्रॉपर तरीके ने नहीं रखी पाते न इस गीते च भी बोलिया था कि रीला ही बनानियां कने खाने जो बिल्कुल जड़े से नहीं खाना सारा दिन जड़े से मोबाइल फोन च अपना समय देना कने प्रॉपर तरीके ने अहां खाना जड़े से भी नहीं खाई पाते तो कुथी ना कुथी मोबाइल फोन भी जड़े से अहां दे स्वास्थ्य वास्ते नुकसान जड़े से जरूर दिंदा है अगर अहां लिमिट ते ज़्यादा मोबाइल फोन का यूज़ करते न थोड़ा दिन अगे बढ़ते न कने अगली जड़ा फरमाइश है तुहां तक पहुंचांदे न इंतजार तुहां दा अगली फरमाइश वास्ते खत्म कर देना।

प्रश्रोताओं तो सारे ही सुनिया ये भजन। इस भजन की फरमाइश हाँ जो आई हुए रकड़ ते कने तिना दा ना वे जमुना देवी तिना तक कहा ये गीत ये भजन पहुँचाया कने तो हाँ सारिया भी इंचो ये गीता। इसी कने हाँ फिर ते अगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा दे न। समय जेड़ा से हाल सिर्फ 6 मिनट बचिया न तो समय के अनुसार थोड़ा दे अगे बढ़ते न समय के अनुसार जेड़ा से चलते ना।

है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला तो हाँ सारे ही सुनी ये प्यारी दे फरमाइश इस गीत की फरमाइश अहां जो आई हुए कंडी ते तिना तक अहां ये गीत ये फरमाइश पहुंचाई। इसी करने अगर अहां परिवार की गल करिए गल

कल्पना करा देना कि रिश्तियाँ च मिठास अह किस प्रकार भरी सकते। घर की रौनक है जिंदगी की असली जेड़ा दौलत है हाँ वास्ते सेवे परिवार का साथ। तुह सारे जो पता है कि परिवार का साथ हाँ करने होंगे तो हाँ सारे काम जेड़ा न से करी पाते न, हर मुश्किल जेड़ा है से आसान जेड़ा है से हाँ जो लगती है, पर अपने दा जेड़ा साथ है से होना हाँ वास्ते जरूरी है। संस्कार कने प्यार दी हाँ गल करना तो दिलां च प्यार कने बड़ियां दा सम्मान करना सभी हाँ जो परिवार ते मिलता है, कने अगर अहां बड़ियां दा सम्मान करदे न तो घर जेड़ा से स्वर्ग सही लगता है, कने अपने दा प्यार जेड़ा से अहां जो जरूर कुछ ना कुछ सिखाई करी जांदा है। सुरक्षा कवच, अगर अहां दुनिया दी धूप चैन तो अहां जो अहां दा परिवार जेड़ा से ठंडक च जरूर जेड़ा से रखता है, तो जरूर अच्छा सोचा पॉजिटिव सोचा, कने दोस्त जिड़ान से अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करते न। सच्ची यारी अगर अहां निभांदे न तो से अहां दी जिंदगी जो सफलता दी ओर लेकर ही जांदा है, पर से अहां पर निर्भर करता है कि अहां हर रिश्ते जो किस प्रकार जिड़े से निभांदे न। तो श्रोताओं इसी कहने तुह सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम का जिड़ा समय है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक। समय जड़ा से हूँ अहां जो बोला था कि तुह अनुमति जड़ा से ले लिया, अनुमति लेनी है तुह अपना जड़ा ख्याल है से जरूर रखा, कने अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गुनगुनांदे रहा।

0: होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दिया तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
7: Oh, shit!

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: करता हूँ आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसे भी हो तुम, वैसे भी हो।

अरे सुनो रे सुनो एक बात सुनाओ, सुनो रे सुनो एक बात सुनाओ, झूठ है या सच है ये तुम जानो, अरे झूठ है या सच है ये

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दिया तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।

0: नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून को रॉ और कार्यक्रम लेकर आया हूँ। सचिन कपूर हाजिर हुआ तुंदे सभी रहे रेडियो सेट में। क्या हाल चाल ने श्रोताओं तुंदे, उम्मीद करनो तुंदे हाल चाल सभी रहे ठीक भूने तो सब अपने अपने घर खुश और तंदुरुस्त भूने हिन और एनर्जेटिक भूने हिन खुश और तंदुरुस्त रहना और एनर्जेटिक रहना क्या तो बहुत ज़रूरी है श्रोताओं। और इसी सो की ज़रूरी है भी हाँ कि तो है अपनी सेहत का ख्याल किया सो ज़रूर रखना, हमेशा खुश रहन, स्ट्रेस किया सो बिल्कुल ना लैन अपने मुंडा पर, है ना, किसी भी गल्ला भी चिंता किया सो ना लैन, टेंशन ना लैन। चिंता और चिंता अंदर मात्र श्रोताओं अक्की बिंदु रहा फर्क और कुछ भी नहीं। इंसान चिंता करे करे हिगदा हिगदा किया सो हिगंदा, सो चिंता तो किसी गल्ला रहनी, एरा जीवन है ना, ये व्यतीत ही ना करना, इसी इंजॉय भी करना है ना कि ये जीवन ना इसी उचित मतलब जी चल रही है तीन चलाए हटद ऐसा ना, क्योंकि जिंदगी दुआले थोड़े ना मुड़ने, ये मनु असु दुआले थोड़े ना मुड़ने हिन। अगली बार न जाने असु क्या बुना, न जाने असु कौन रिश्ता मुड़ना, जो इंदा रिश्ता हा इतनी थो खबर कितना बुरा रिश्ता असु मुड़ना हा कि खबर इतियों खरा भी मुड़े सकता। सो जो असु ले हा ठेरी इज्जत करा, ठेरा मान सम्मान करा और तसियो अपनाए लिया, तस रिश्ते जो कि असो अपनाए लिया शतो। आऊँ सचिन कपूर आ 5 बजे तक तुसु मंजो हो गए ये बने रहना हाँ हिंदी अपनी गप्पा मंच वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच। और तो सब श्रोता भी असु हो गए कनेक्ट हो सकते हैं जनाब 7081 8 8 7 0 9 8 पर तो है कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के आसो होने सकते हैं। नंबर अक मौके फिर आऊँ तू होगी शेयर करनो साझा करनो 7081 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल कर कर ही अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं, अपने क्षेत्र जानकारी की सो साझा कर सकते हैं। बल देना श्रोता बहुत सारे इन श्रोतागण जो कि सो इंतजार बुंदा चौर बजने रह के कहने चौर बजने और कहने इंदा गादा कार्यक्रम किया सो लाइव या हो रहा है कहने के है ना सो कनेक्ट हूँ। तो चलिए इंदा श्रोतागण असू के कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन इतों अगले भी कनेक्ट हो चुके हैं, माफ़ करें डिसकनेक्ट ही हो चुके थे ना इन त्राई शो तो लगातार किया सो कॉल करो कर दी थी ठेरी वजह किया सो थोड़ा मैच अपना हुआ। चलिए फिर कनेक्ट बंदे तो जरूर तुस हो गए भैया है कनेक्ट के सो कर दें इत अगले शो था फिर कनेक्टेड ही। चलिए नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते, वो ठीक ठाक?
0: बहुत बढ़िया जी। कौन बोल रहे? हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते जी।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी, आवाज नहीं सुन रही? हाँ जी बहुत बढ़िया, तो ये बल्ला तो ठीक ठाक ना?
1: हाँ सब ठीक ठाक जी।
0: अब सुन रही आवाज?
1: हाँ आवाज सुन रही।
0: अच्छा जी, कौन बलुंदन और कड़ी थो बलुंदन?
1: वो तारा चंद बलुंदन दाड़ी थो।
0: अच्छा तारा चंद जी, और नोए ताजे तुम दे दाड़ी रही था, नोए ताजे तो ना बल्ली सकते लेकिन काफी दुखद घटना की असो हुई है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: ता तड़ी कड़ी ने तुम दे दुकान जी?
1: तो ता मेला ग्राउंड वाला ना मेरी ता रूम है तो ता टेंट साउ तेरी हाँ जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: मांझी पुड़ा वाले?
0: अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी। सो ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਘਟਨਾ।
0: ਅੱਛਾ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
0: ਤਾਂ ਜੀ ਔਰ ਰਾਜਬਾਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ?
1: ਹਾਂ ਰਾਜਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬਸ ਹੈ ਨਾ
0: ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬਸ।
0: ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?
1: ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਭੀ ਤਾਂ ਕਸਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ।
0: तेल भी महंगा बच्चू करता।
1: हाँ तेल महंगा बच्चू
0: काफी ज्यादा महंगा हुआ था साइकिल चलाने तो खरी गल
1: है।
0: चलिए जी विश्व साइकिल दिवस अलीमोदा सुनाते थे तो ऐसा सीता था सभी जो मुबारक बुने दिवस थी और बहुत कुछ आ जिनकी तो है शॉर्ट फॉर्म में ऐसा सीता कि अपनी कसरत बुंदे या साइकिल चलाने तो है ना तेल बचंदा हा तो है फिजिकली फिट रहते हैं जी जनाब। तो कौन देने गीत होना पसंद कर ले?
1: तेरा मेरा लगन।
0: अच्छा क्या बात है, चलिए ठीक है जी। तो तेरा मेरा लगन होने दें तुसु।
1: ठीक है जी,
0: धन्यवाद जी। शोध एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो ऐसा भी ट्यून कर रहे हो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही हैं। ताइए तीसों गेंद अगले श्रोता भी असू के कनेक्टेड बुझ गए श्रोताओं पूछ दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू कर दिन। नमस्ते जी।
2: नमस्ते सर जी। नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार।
2: और ठीक ठाक ना सर जी?
0: बहुत बढ़िया जी। तो है भले तो ठीक ठाक ना?
2: हाँ जी सर जी, ठीक ठाक है सामी सर जी।
0: अच्छा जी, और नोविता जी?
2: नोविता जी सब बढ़िया सर जी।
0: अच्छा करे लग रहे?
2: कुछ नहीं सर जी, तो हमें प्रोग्राम दी नहीं आड़ तो हमें तेन प्रोग्राम सुनना सर जी तो हम।
0: अच्छा
2: हाँ जी सर जी।
0: चलिए ठीक है जी। तो कौन देने गीत होना पसंद कर ले जनाब?
2: सर जी सुनील राणा जी आवाज एक नया गाना है ना।
0: अच्छा
2: परंपरा।
0: हाँ जी हाँ जी
2: हाँ जी, क्या है गाना सुनाई ने मुझे सर जी।
0: चलिए ठीक है जी, जरूर होने ले तो सुए गीत।
2: धन्यवाद सर जी। नमस्कार सर जी।
0: धन्यवाद जी। धन्यवाद। एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला। तो सब ये ट्यून कर रहा और हिंदी अपनी गप्पा लाइव चल रही है इस वक्त। था तो सब श्रोता जुड़े भी सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं जी हिंद है बाकी श्रोता करू करते हैं। तो श्रोताओं तू सब भी जो जरूर हिंद है नोए नोए गीत के इस वक्त सर हिंदे जी आए दस देवें तुसू है ना। तो नोए गीता होगी तो सो जरूर है रूबरू कर वाले शोथों। लेकिन आइए जी तातों पहले आगाज कर लेंदे कार्यक्रम रहा और आगाज तो बाद फिर तुंदी सभी री फरमाइश है ना सो असु जरूर पूरी करनी रोज इंदी कोशिश किया सो डेली रहेंदे कि तुंदी फरमाइश है सो है पूरी करना स्थानीय जानकारी के न सो है तुस होगी जरूर शेयर करना और सोगी सोगी इंदी कोशिश ये भी रहेंदे कि इंदे स्थानीय मणु के न इंदे अपने गादे मणु के न या इंदे अदर कम्युनिटी रे जो मणु असू की जुड़ देन सो भी प्यारी आवाज़ भी तुसू तक है जरूर।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इस वक्त हिंदी अपनी गप्पा गैन सतुस हो गए चल रहे था बिल्कुल लाइव एक कार्यक्रम चल रहा तो सब श्रोता हो गए जुड़ सकते हैं। श्रोतों जी रोजाना जुड़ते हैं जी आप जो जुड़े थे 7 0 8 8 8 7 0 9 1 पर नंबर एक मौके फिर रिपीट कर दें जी 7 0 8 8 8 7 0 9 1 पर तो सब श्रोता कॉल करी सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं। तो बिल्कुल छोटो यह तुसु तक जानकारी पहुँचाई देते थे लेकिन आज थोड़ा करे स्पष्ट किया स्पष्ट रूप थो तुसु तक जानकारी पहुँचाते हैं कि जिला कांगड़ा रे मुख्यालय धर्मशाला वे दाड़ी क्षेत्र में गया सो ई बेगा एक महिला द्वारा फंदा गया सो लगाई कर आत्महत्या करने का मामला गया सो सामने आया सो तो मृतक की पहचान पलोमा आयु 45 वर्ष और पत्नी हिमेश कारकी निवासी दाड़ी धर्मशाला रे रूप में किया सो बच्चू कर दिया पुलिस से किया सो मेरे तिकरे पति और सास वे खिलाफ किया सो आत्महत्या रे खिलाफ उकसाने रे आरोप में किया सो मामला दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। मिली जानकारी रे अनुसार श्रोतों चीलघाड़ी निवासी जिसकी मिली नाथों जान देती है पुलिस थाना धर्मशाला शिकायत माफ कर चीलघाड़ी निवासी पुलमजा की आता है धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाया कि सारी बहनी जो पुलमा जो किया मिली जो किया सो सारा बह गया सो वर्ष 2006 में दाड़ी निवासी हिमेश कारकी होगी बसूरत हो और यारा एक 16 साल रा दब्बू भी है। शिकायत रे अनुसार किया सो शादी रे करीब एक वर्ष बाद एक साल बाद गया सो पति पत्नी वे बीच विवाद किया सो शुरू बुझ गो और दोनों रे बीच किया सो तलाक रे नौबत चले आए। तलाक रा मामला अदालत में विचाराधीन थू सो तो आरोप है कि पति और सास रे व्यवहार और आहत हो बचे करे कि ऐसो मिली है मंगलवार बेगा करीब 7:30 बजे अपने कमरे मंच के ऐसो अपने कमरे में पखे थों कि ऐसो फंदा लगाए कर आत्महत्या किया सुकारी ले सो तो और आत्महत्या करी ली और पुलिस से की सब शिकायत रे आधार पर हिमेश कारकी और नीना कारकी वे खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS वी धारा 108 और 53 रे तहत मामला दर्ज करी दिता। पुलिस विभाग कांगड़े वे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SP वीर बहादुर सिंह दसुआ के मामले वे जांच किया सो जा रही है और धारा लगेगी इनकेस लगेगा मतलब कि हक और लाड़ा किया सो अंदर भूने रही पूरे उती अंदर ने फिलहाल तीन पूरा दिन शायद ठाणे अंदर बखालू करते भूने ने और सजा भी मुलने आ कजू की एक सुसाइड नोट भी आ सोगी बहनी है कि सुधोनी दसरो और सोगी तो हैरा कि सिर्फ आजकल ना मारने वाला काम नहीं है कजू की मार दिन ता मतलब पुलिस चलें दे आ FIR पुछगन दिया सब भी पता है ना पुलिस डरंदे भी आ पुलिस सब कुछ कर दिया आजकल मेंटल टॉर्चर किया सोए है वो करो कर देती है जो यहाँ रहे नज़दीकी हिन तिन्याओ गिनती भी गलबात भे और इति अंदर भी आके मेंटल टॉर्चर ज़्यादा थोता हो मतलब कि ताने मारने वाला काम किया था सोता हो उस ज़्यादा थो लाड़ा भी मारदा तो ताने हको भी मार दी थी और बच्चा फिर जर्द बच्चा ही दूर थो बच्चा बूढ़े ले या फिर दादी ले वेंदा थो सो बिल्कुल ही अकेले थे अक्सारा बंदा ना कि बच्चा सोगी बहुत अक ख्वाहिश बुचगन दी आकाश बुचगन दी कि हाँ बच्चा मुंजो सो गया चल कोई गल ना लेकिन जब ता होगी थो ही कौन था एट लास्ट तो है फिर 2006 में यार बह बुछूरत हो था 7 में गया सो विवाद शुरू बुछूरत हो सो तो 26 अंदर है अपनी जीवन लीला के आसो समाप्त करी ले सो तो और एक काफ़ी बेहद दुखद बेहद ज़्यादा गया सो दुखद सो तो चलिए है तो यही भी रिक्वेस्ट करी थी आज भी गुजारिश कर दें सब भी थो कि अपने रिश्ते जो कि सो बिचेड़ा मत बनाए कर रखा कजो कि रिश्ते रे जो डोर बंदे बड़ी नाजुक बंदे टूटेगी तो फिर इस तरीके हो गए टूटे गंदे और फिर सो कभी जुड़े ना सकते सो जिंत के विष ते नवीन दिन ते के जरूर निभा, बैलेंस करा और इस तरीके भी सिचुएशन आके अस अपने घर पैदा ही मत बुना दिया। बहरहाल इन श्रोता का ना सूगे कनेक्टेड हैं, पुछ दिन कौन बोलूं दे। नमस्ते जी।
1: हेलो नमस्ते जी।
0: हेलो नमस्ते जी।
1: हेलो हाँ जी, मैं साक्षी बोल सुनी आ रहा कुछ से।
0: हाँ जी साक्षी जी, कौन दिन की थोड़ा तुसु
1: बनी में इसका।
0: ठीक है साक्षी जी, जरूर होना ले
1: जी।
0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और हिंदी अपनी गप्पा के अनुसार चल रही हैं। तो आइए इन अगले श्रोता से होगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
2: नमस्ते सदगुरु जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते,
2: क्या हाल चाल है?
0: बहुत बढ़िया जी, तो है बल्ला क्या हाल चाल है?
2: बहुत बढ़िया।
0: अपना शुभ ना दस दिया हूं तो बचाने को तो सुओ
2: दाढ़ी से मेघनाथ।
0: मेघनाथ जी जो दाढ़ी में बुआ सो बहुत बुरा बुआ।
2: हाँ वो साले ने कोई 600-700 मीटर ही दूर है।
0: अच्छा,
2: मेला ग्राउंड ने करने ही है।
0: ओहो, तो तो हाँ जान तो है, जान दे थी तीन जाओ
2: सारा रास्ता ही रोज जगह है।
0: अच्छा,
2: तेरा तेरा नहीं जड़ी नना नने जड़ी सुबिका करती।
0: हाँ जी हाँ जी।
2: हाँ तो बड़े साल रही ना प्रधान भी रही पार्षद रही।
0: अच्छा अच्छा, सरिता कार की नना ने दी थी।
2: हाँ जी।
0: अच्छा
2: सुबिका कार की।
0: हाँ हाँ, सविता सविता।
2: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा, बड़ा दुखद घटना जी। शब्द बड़े घटने के, क्या बोल लिए है घटना वरना।
2: चलो परेशानी की सरकार से ना दी थी ना, लेकिन तभी थोड़ी सर्विस कर दी थी नहीं, ऐसा ज्यादा जान नहीं देगी थी, क्वार्टर ले लें थी कुछ लग रहा नहीं ना।
0: हाँ जी।
2: हाँ क्या करना चाहिए रहा पर हूँ, सुबह 4 बजे का तेने सैर सूर की ग्राउंड से।
0: अच्छा,
2: 7 बजे अपनी सब्जी वगैरह लेकर गई।
0: अच्छा,
2: कने सर्विस कर दी थी रे वाटर सप्लाई दे विभाग च।
0: हाँ 2500 रुपया मिलता था महीने का।
2: हाँ उठ जाना वा उन्हें पता नहीं क्या क्या दिखता करें, मतलब वो जरा लड़का जरा दस्ता है ना वहाँ इसने नहीं मिलना दे जो है।
0: क्या मांझ रहा था जी, कब ना मिलने देंदे थी? अच्छा अपने दबू हो गए, अपनी औलाद दी हो गए।
2: ओ महाराज दादी दादी जी है ना।
0: हाँ जी।
2: ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੋਦ ਲਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ।
0: ਅੱਛਾ,
2: ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।
0: ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੋਈਏ ਹੋਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ।
2: ਅੱਜ ਨਿਕਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ।
0: ਅੱਛਾ
2: बड़ा
0: मुश्किल है जी,
2: बहुत मुश्किल।
0: देखा ना पूरे इतना ही लगो करता ना कि जो ससुराल पक्ष है सो बिल्कुल मतलब सीरी वजह सुसाइड करी करी के ससुराल ससुराल पक्ष री वजह तो होता है कि सो लेडी है सुसाइड करो।
2: हाँ जी हाँ जी,
0: है ना
2: मुश्किल हो जानी है ना।
0: हाँ जी,
2: क्योंकि दोनों जने अगर जे देश अंदर अंदर रहे तो स्कूल भी जाना बच्चे।
0: हाँ जी
2: फोन करें, कोई मेंबर है नहीं।
0: अच्छा
2: हाँ बाकी हूँ रिश्तेदार में अच्छा बता मंगलू क्या पता कुछ रिश्तेदार ने जाना नहीं जाना क्यों गए ना दूर नहीं बदले यार कुछ ने जिदा बच्चे मिलना नहीं देना था फिर क्या हिसाब होता ना
0: बिल्कुल बिल्कुल अच्छा
2: वातावरण तो ता ही होंगे मतलब बच्चा था आगे पीछे रिश्तेदार जी कुछ मिले मिले था नहीं है ना गल
0: हाँ जी
2: वो मिलना नहीं देना अगले
0: बहुत बुरी सिचुएशन की ऐसो पैदा कर रहे थे बड़ा एनवायरनमेंट की ऐसो खराब थू मतलब घर आ रहा
2: हाँ जी हाँ जी
0: तेरी वजह होता है महिला की ऐसो सुसाइड करे
2: चल ले आ
0: एनवायरनमेंट खराब बंदा खुशमुआ माहौल बंदा खुशी वाला माहौल बंदा हंसी मजाक वाला माहौल बंदा घर अंदर था मजाल से सो लेडी सुसाइड कर दे है ना
2: नहीं करनी थी
0: ना करने थे और मुझे तो ये लगता कि जो इंसान सुसाइड करता सो वाकई में बहुत ज्यादा दुखी बंदा ताई की चिकरी है कदम
2: बहुत
0: की सोच
2: दुखी होती है ना मतलब मैं ये दस सुबह 4 बजे सैर की थी फिर अपना दूध सब्जी वगैरह लग रही थी ना
0: जी
2: लग देते हैं सारे कमरा
0: हाँ काफी मुश्किल है जी चलिए जनाब कुंडने ने गीत थोड़ा तो सुबह दसा
2: अच्छा सुनाई दिया परमानी माता का
0: ब्रह्माणी माता का
2: हाँ जी
0: चलो ठीक है जी जरूर होना ले तो सु
2: बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद जनाब चलिए श्रोतों बहुत सारे श्रोतागण के इनसे कॉल करूँ कर दिन सभी री फरमाइशा है ज़रूर पूरी कर ले लेकिन आइए धीरे धीरे किया सो अब जो फरमाइशा छूरी नहीं हो भी किया सो पूरा करते चल देन बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।

0: श्रोता एफ एम एंड 91.2 MHz पर वेरी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के सो बिल्कुल लाइव चल रही है तुंदे वीडियो सेट में ता जरूर तो है सब कॉल कर सकते हैं 7088889 पर नंबर एक मौके फिर आऊँ शेयर कर लूँ जी 7088889 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के सो हो नहीं सकते ना अपने क्षेत्र की जानकारी किया सो भी जरूर साझा कर सकते हैं लेकिन यह गलारा खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर बहुत शो तो जानकारी किया सो तुसों की शेयर करने वाले जरूर वो है ना जी। चलिए जी चल दिन थोड़ा करिए और हगूँ शो तो और सुनील राणा जी का नवा गीत तेरी फरमाइश आई थी जी तो हूँ लेंदे ने इस नोए गीत जो है सब भी लेकिन तत्थों पहले आइया आ लेके चलते तू सभी जो इंदे अगले श्रोतारी किनारी नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते जी जनाब कुण बलदेन और कड़ी थों बलदेन
1: खनेरे हूँ बलुआ दे पटोले हूँ
0: खनेरा पटोले हूँ बलुंदेन
1: हाँ जी
0: अच्छा क्या नाम जी तुंदा
1: हां जी मेरा नाम कांता देवी है
0: अच्छा कांता देवी जी
1: हां जी शांता
0: शांता
1: हां जी
0: अच्छा तो और पहली बार लोगों फोन तुंदा रेडियो मंच
1: हां जी पहली बार
0: अच्छा तो किने लगता अपना गादा कार्यक्रम रेडियो मंच होने करे
1: मेरा ख्याल
0: अच्छा
1: बड़ा बढ़िया है यहाँ मजा चली इंदा होने रा
0: अच्छा
1: तुमने जलना रा मजा इंदा से होने रा मजा इंदा
0: चलिए जी धन्यवाद है तुंदा प्यार है तुंदा आशीर्वाद है सियाने रा जी
1: हाँ तुंदी गल्ला रा बड़ा मजा इंदा होने रा बड़ा मजा इंदा गाने बड़े ख्याल इंदे मजा इंदा है तो रोज होने
0: अच्छा कॉल आज पहली बार ही लगे है ना जी
1: हाँ जी तुंदा कड़ी नगर
0: इंदे योली इंजी कर
1: अता तो पड़े ही न
0: हाँ जी हाँ जी
1: खड़ारा ते योली कितना का दूर आ
0: हाँ रेडे रेडे है सियाने तो है तो बड़ी मौके पैदल भी आए बुने न
1: आओ योली ता ये ओल टाइम था तो बुजार अबे योली ते दारू ताला था हा।
0: अच्छा
1: हाँ ले कड़ी तुम दस लेट के दाम में बात है कि
0: ना जी इंदे नोडरानी मंदिर रह लेन घर नोडरानी मंदिर है ना जी
1: जी
0: बस तटी है ना माता रा चरना ले
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ जी
1: बढ़िया जगह ना कहाँ तो
0: हाँ जी हाँ जी
1: इन द पटोल ले ना किसने कपूर रन सुपर ले
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: त्यार करा ऊपर दे मत है ना थोड़ी
0: किशन कपूर जी क्या लगते थे तुम दे शरीर

0: है?
1: ना आठ बाट नो बाट ब्राह्मण है।
0: अच्छा, बाट ब्राह्मण है तो
1: हाँ जी
0: पड़ोसी
1: तो
0: बहू है।
1: जी पड़ोसी न बेचारे तारे के दे रखा रिश्तेदार ही रखा है
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
1: बेचारे। हाँ
0: चलिए जी, मनु खराब होना चिंदा है ना, मनु
1: हाँ
0: खराब
1: वो
0: होने चिंदे।
1: जाति का कोई नहीं है, मानो खराब होना चाहिए साल
0: हाँ
1: संसार चलता।
0: बिल्कुल, जाति
1: हाँ
0: तो है बंडी तुरी चलो, पर मनु खराब
1: ये
0: हुआ
1: ना
0: था।
1: जात जी
0: जी
1: जात
0: जी
1: खरीब हुआ नहीं तो कुमार नहीं हुआ था सो फायदा के जात
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ
1: तो ना होना चाहिए आदमी खराब होना चाहिए।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कई था मीरे रे घर की चिकरी ना, मीर कदी कदी चाहियो भी ना पूछंदा है, पानियो भी ना पूछंदा
1: हाँ जी एरदा ना बनो हाँ
0: है ना।
1: धरती का ना एरदा जी है सो सुरगाओं दादा जी
0: हाँ जी, और मातड़ा रे घरे चलीन, इंदे अपने घरे चलीन जी। हाँ, जो मातड़ भाई ने त्यारे
1: हाँ
0: घरे
1: तो
0: चली गए,
1: आदमी
0: तो तिन्या
1: करना
0: खाना भी खुवाई करी भेजना।
1: आ तो मन भगवान मुझे तो समझ दिया हूँ था।
0: हाँ, क्या बात है। अक मेरी मम्मी रे ना, मुझे याद आया गल, मम्मी रे मामी हेना ले सो
1: हाँ जी
0: बंदे, तिन्या गल बल्ले थे बचपना, मुझे आज दिन तक याद है कि मम्मी हो गल बल्ले थे। आऊँ तो मम्मी कहूँ कि इच्छू कर दे थे आऊँ तैने, हल्का बंदा तो स्कूल पढ़ता तो शायद शायद ना
1: हाँ
0: स्कूल
1: जी
0: पढ़ता तो तिन्या मम्मी ने बड़ा फोर्स करो खाना खाने वास्ते, तो दिन रहा टाइम तो खाना खाने रहा टाइम तो अग 1:30 बजे रहा टाइम बुना, तो बड़ा फोर्स
1: अच्छा
0: करो और मम्मी ना ना कर दे रहे, ता मम्मी वे ना तिन्या ले और बल्लो फलानिया इडियो आई, ता बल्लो जो मनु इंदा ना तुंदे को जो खंदा सो अपने भाग्य रा खंदा, मतलब और ऐसो
1: जी
0: सौभाग्यशाली बंदे की सो खुआई सकते, क्या है तूने लाइक इन क्या है कस क्यों दाना पानी की सो खुआई सकते
1: जी
0: कोई। हाँ, और बंदा यह है
1: जी
0: अपना कर्म के सो खरा कर देन हगू वास्ते कोई, तो थोड़ा खाऊं दे अपना कर्म खरा करो दे। हाँ
1: अपना रास्ता साफ पूरा करना है।
0: जी, हाँ जी, हाँ जी, अपना
1: जी
0: रास्ता साफ लूरा करना।
1: जी
0: तब मुझो अमा सियाने रे फोन ही तो बड़ा खुश बंदा, दिल तो खुश बच गंदा हूँ।
1: सियाने को खरी गल दसनी पूरी गल थोड़ी दसनी है ना।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: कोई यार को ये न बोलना तो टेढ़े रास्ते चल रहा बड़ा
0: हाँ जी,
1: बढ़िया प्रोग्राम करता। मेरी इच्छा थी ना अंदरारी कि
0: हाँ जी,
1: मो करनी है गाल फिर मेरे अपने पोत्रु बोलू मैं रोड़िया करवा ला गाल तो
0: अच्छा,
1: फिर मेरे बड़े चाल गाने बड़े चाल स्पीच सब कुछ चाल दिन था मेरू करा ला तू गाल करा ला तो
0: अच्छा
1: मो करनी है मेरे आज गाल बोलता
0: हाँ जी,
1: दादी करवा देता हूँ आपकी बात आज हाँ
0: अच्छा
1: मेल करवा करवा रहे तू तो दे
0: चलिए,
1: रहा हूँ इच्छे तो फोन भी लगी हुआ फटोफट
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: तब ठीक है चलो तो मुझे बोटरी वाला गाना होना आई है क्या
0: आहा प्यारी बोटली है,
1: ही बोटरी गया हूँ
0: क्या
1: तो
0: बात
1: होना
0: है।
1: आई है।
0: सो गीत तो सु हमें जरूर सुनाना, पर जिंदगी रे बड़े अनुभव बंदे हम है ना, कि कदे कदे जिंदगी की ऐसो व्यतीत करे है, कदे कदे जी है ना,
1: हाँ
0: तो क्या
1: जी
0: तो है दसना चाहते ने इस समय तुसु मुल्क मनो हुणु दे, मतलब लखर हिसाब है मनो हुणु कर देन तुसु
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो।
1: यही करना दे मिट्टी का मन होना तो मिट्टी होगी मिली रहना
0: अच्छा,
1: ये ना सोचना कि भी ऐसा बड़ा ना अरे तेरा पता मिंजो नहीं है मेरा पता तिजो नहीं
0: हाँ जी,
1: है ना पर
0: हाँ जी,
1: ऐसा नहीं मिट्टी रे आदमी ते
0: अच्छा
1: मिट्टियां मिलना चाहिदा जितने भी बड़े बच्चे गल है मेरे घर दो ही तीन समा लेंदा
0: अच्छा
1: पुत्र मेरा बड़ा अफसर लग गया डिप्टी कने
0: अच्छा
1: आऊं ता सोच देना कि घुमांड क्या चीज है
0: अच्छा
1: मतलब मिट्टी मन दिया ये प्रार्थना कर लू ब्यागो ठीक है भगवान मिट्टी है दी रखे
0: अच्छा
1: चाहे करोड़ा भी कमा लिया पर मिट्टी है दी रहन बस। हां
0: रैन,
1: जी ये शिक्षा दिनों बे मिट्टी या मन हूं तो मिट्टी जुड़ना चाहिए कहा कामयाबी होंगी है
0: हाँ कामयाबी बंदे हैं
1: हाँ कहा
0: सही,
1: मन कामयाब होंगे थे रती की बुआ घुमांड बड़ा भारी करी ले सो घुमांड कर लाना
0: कर लाना
1: अब दो ही गल तो खरी कर दी ली तो मरी करी तू सु याद करना
0: करना करना मनु।
1: हमारे मन वो इतनी खरी गल करी थी
0: हाँ जी,
1: आते इन्हें तो कुछ भी ना गाना सोगी खाली अथे छूरे खाली चली गाना
0: खाली चले गाना,
1: जितना भी जोड़ी लिया जितना मर्दी जोड़ा गाना खाली हथे ही है।
0: खाली हथे ही है ना जी, जितना भी जोड़ा। अच्छा हम जी गंदे गंदे एक सवाल और फिर हम अलविदा लेने तो सुता हूँ कजो कि फिर पता ना जाने कहने कॉल लगनी तुंदे ना लगनी। सवाल है कि आजकल ना रिश्ते बड़े तार तार बुचू कर देन, मतलब बड़े बिछड़ू कर देन रिश्ते के ना, सो बड़े टूटू कर देन करखा अबे हाल। हाँ जी
1: आउं दस सुखस कारण।
0: हाँ हाँ प्लीज प्लीज सब भी दस।
1: मोबाइल का कारण टूटू कर दे इधर ये साल चलाई की दे ना पता ना।
0: हाँ जी
1: बस मोबाइल आज से बुढ़े भी थोड़ा दे भी चाहिए आज के मोबाइल ही चाहिए दा जवान का जवान है ना आज से भी गेम में हिरुगत दे कोई क्या हिरुगत दे आज बुढ़े भी खराब जगह पे डोर लगी रहे ऐसे हिरदे रहे बंत बंते चीजें हिंदी रहती।
0: हाँ जी
1: तो हिरदे रहते ये मोबाइल का कारण टूटते सब रिश्ते
0: मोबाइल रे कारण। तो हम कर का जी हाँ अबे रिले हाल ही में दाढ़ी में के एक वाक्य हुआ कि मतलब है ना सो हक होता है पुत्र क्या थी सोता अनुख हो गया सो बड़ा हुनने में आया प्रताड़ित कर दे थी है यानी कि ताहो मतलब सिखन दे ना थी है ना लग रख दे थी अपना खर्चा अपू कर दे थी सो बेचारी फिर और ये भी हुनने में आ कि सो ता है 2700 सो टॉर्चर ताँ से वो कर दे थी कजो कि सारे माँ बुढ़े ना थी है और सो ताँ दबियो रही थी कि सारे माँ बुढ़े रही मर रहे माँ बुढ़े रही कि सो बेचते ना बुआ के कुड़े था बस ही ना।
1: हाँ
0: ताँ सो 2700 के सो टॉर्चर से वो कर देते था इड़ी था मोबाइल लारा कोई कॉन्सेप्ट ही ना हम इन्हें ने रिश्ते भी बड़े ख़राब होंगे हमें नोए नोए बह मुल्क हेरे बुने तो है कि डाइवोर्स के सो बुजगत चुंदा या छड्डी छड़ाई करके सो मतलब चलो कई तो बेचारे दुख हरे भी इन दिन है ना लेकिन रिश्ते की करी संभालना माँ है
1: ए कहीं हमें पता के हा हुआ माँ भी नुकसान बुंदा।
0: अच्छा
1: सच्ची जेट दस माँ।
0: हाँ जी
1: सो ना समझी ना जे ए दीवान सो समझी नो हान आते अपनी दीवा दीवा समझना ते नो है नो है समझना
0: जी
1: सो बिल्कुल गलत था नो आके बंदी सो दीवा बंदी
0: जी
1: आते जेड़ी अपनी दीवा बंदी सो बिल्कुल ना बंदी कुछ भी
0: जी
1: कदे जे कम में अगला से बीमार उल्ले कम में नो है ना
0: जी
1: ऐसी ऐसी सोचा रहे जेड़ मन हूँ ना
0: जी
1: मेरा भी आखिरी बत्तरा भी रास है कुछ ना कपी पे ना ले रही।
0: अच्छा
1: मैंने अपने बच्चे हाय रख रहे हैं एक चीज तैसा ही भाई तेरा ही सब कुछ मेरे तो कुछ आई ना और तैसा अपनी दुआ हूँ भी ज्यादा समझ लो
0: क्या बात
1: मेरी मेरी नो है ना वो मेरी भी हो ना वो मेरे बच्चे बच्चा कब्र मेरे नो मेरे बच्चा तुम बच्चे वो बीमार बीमार जो भी वो सो ना अच्छा मेरे मुंह हम
0: अच्छा
1: और सन कैसे कैसे सोचता है मन उन्होंने ये मुझे सब न इंद्र ते हो सब दे ना वे इंद्र करा जे मन वो ये कई कर मैं ऐसे ही रहे आप अपने बाले भी रहे कई एक बच्चे भी
0: जी
1: और सन कौन गलत तो सोच पाई ले और पाली ले और ये तीन ये कि ये बगानी है वे बगानी तुम तो बैठ करे अंदर ही सोए यही तो तुम तो बच्चा मेरी तो दी बाबा अक दी जीत रहे अक ले अंदर नाम दिंदा मुझे
0: क्या बात है मां और हम चाहता कि जितने भी समय लख मणु है तुंदे स्पीच होने हल्के ने थोड़े टाइम वास्ते कुछ कि समय रा अभाव बंदा सुले तो एक करोड़ रुपये खर्च करे भी कसी ना दसनी तुसु जो इस समय तुसु हुनने जो मोड़िया तो हम जी तुंदा बहुत बहुत धन्यवाद है और प्यारी बोटली की तुसु है जरूर हुन ले।
1: अच्छा बच्चे थैंक यू धन्यवाद
0: धन्यवाद जी कदे लगो हम गल करी के रेडियो मंच
1: बड़ा बढ़िया
0: वधिया लगो
1: बहुत बढ़िया शांत चले आए जो बड़े दिन आ रहा मेरा मन तू ना।
0: हाँ जी
1: तो शांत बुझ गो
0: चलिए मां जी, यही तुंदा आशीर्वाद और ये मेरी ताकत आ, ये मेरा प्यार आ, और ये बस आशीर्वाद।
1: प्रोग्राम ही बड़ा बढ़िया था।
0: चलिए जी, हम कोशिश करनो रोजाना अच्छा करने री, और बस तुस वही है
1: बहुत अच्छा बंदा, बड़ा अच्छा।
0: जी तुस।
1: बाकी प्रोग्राम सब ठीक लगते हैं सुनते फिर प्रोग्राम लग गए।
0: चलो अम्मा, थैंक यू सो मच। बाकी भी मेहनत कर देन बेचारे हूँ ले लेता घर ना लगना तीनों, पर थैंक यू सो मच अम्मा।
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू जी, थैंक यू,
1: थैंक यू, धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के अंसर चल रही था। श्रोतो ये स्पीच जो मैं देते हैं अब 9 से 10 मिनट रे स्पीच जो भोए आए, ये बहुत लीगल स्पीच आए, बहुत एक्सपीरियंस वाली स्पीच आ, और ये स्पीच तुसो रेडी गुंजन धर्मशाला रे अलावा के असो करखा हुड़दा रेडियो मंच ना हुड़ने जो मिलने, और खासकर अपने गाते कार्यक्रम थो अलावा तुसु होड़दा कड़िए भी किया सुना होने जो मोलने। हाँ जी बिल्कुल, ये सच्चाई होगी अम मैं कि ऐसो रूबरू करवाओ हा, और आऊँ तो हमेशा बोल लो जो कि मेरी मम्मियों सियाने के इनसो बड़े पसंद, और मम्मी अक्सर बोल दे कि बच्चा सियाने और बच्चे रह ख्याल के सो सब भी ज़्यादा रखना को जो कि सो ये एक स्टेज बंदे जड़ी कसकी भी जरूरत के आसो पेंदे हा, जाए सो तुंदे नौका, जाए सो तुंदा पुत्र आ, जाए दियो आ, जाए कोई और आ, तो इस स्टेज में के आ सो सियाने भी जरूरत पेंदे, ताए मैं अपने प्रोग्राम रही टैग लाइन भी बनाई ली कि अपने सियाने रह के आसो ख्याल रखा, है ना। बच्चे का ख्याल तो लगी बंदा, बच्चे की दाह तो हर कसी लगी बंदे, और यू ना लगले माओ बुढ़ो तो लगले लगले, है ना, क्योंकि क्यूट बंदे इतने जो तैयारी हरकत याद हिंदी ने, लेकिन सियाने तो बेचारे सियाने ना कजो कि सोना उमरी खाई बिखरे बुंदे, है ना, त्यारी दा तिन्यों लगदे जियारे सियाने बुन, ता सो जियारे घरे सियाने इन सो जरूर यारी इज्जत करा, मान सम्मान करा, और इन्या हो गए बही करेगी सो गलबात करा, बहुत एक्सपीरियंस मुलदा लाइफ रा, और ये एक्सपीरियंस तुसु किसी भी एकेडमी किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल मंच ना मुलना, बेशक तो है बड़ी हाई फाई इंग्लिश बोलते ले, लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस तुसु इकट्ठी बना मुलना शो तो जो है गेन करू कर देने इस कार्यक्रम के जरिए। चलिए चल देने और कार्यक्रम मंच अब अगली फरमाइश पूरी कर दें जो

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हवेली गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो रहे कार्यक्रम सचिन कपूर सो की लाइव होने कर दिन समय रहा थोड़ा करे अभाव और फरमाई शायद दो ही असूल है पेंडिंग चलिए जी माता भरमानी जी रहे प्यारे दे भजन की असो होन लेन दिन दिन सभी रहे रेडियो सेट मा

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुड रॉ और हम सचिन कपूर है। श्रोता बहुत सारी फरमाइश है पेंडिंग ही ना सुले अगर फरमाइश और भी है इनके बहुत प्यारे भाई ने और बल्दे ने कुछ रिश्ते के न माफ़ करे अंकु जी तो है बॉर्डर फिल्म रा संदेश आते है फरमाइश करे ये गद्याली कार्यक्रम चूर तो पंच सिर्फ इन गद्दी गाने के सो ही चलते हैं और 6 बजे मिलते हैं अंकु जी तुसो गीत तुं फरमाइश पूरे करने ताई 6 थों 8 के सो हिंदे कार्यक्रम हों ते अंदर ये गीत के सो है गुनगुनाई सकते हैं और तुसो सुनवाई सकते हैं। चलिए अंकु जी की गल करें तो अंकु जी हो कि बहुत पुराना रिश्ता इन बहुत पुराना नाता और बल्द ने कुछ रिश्ते के न सो बेशक है रोज़ ना मुलते बुन बेशक रोज़ गल ना भुंदी बो लेकिन अग जो दिल अंदर प्यार भुंदा कि दुए प्रति अग दिल अंदर जो प्रेम भुंदा जो मान सम्मान भुंदा जो इज्जत भुंदे सो हमेशा रेंदे और ऐसे माणू के सो बहुत कम मुलते लाइफ में तो अंकु जी थैंक यू सो मच बड़े भाई और बाकी सब भी श्रोतारा भी जितने भी लक्ष्य होते समय हूँ कर दिन त्यारा भी धन्यवाद हा और अंकु जी अगली बारी गद्याली गीत किया सो तुसु है जरूर फरमाइश करें जरूर हूँ ले अंकु जी इंदे सुधेड़ रहे स्थाई निवासी हिन और टैक्सी चालक हिन जो कि हमेशा अपनी सेवाएं के न सो तत्पर रन दिन देने वास्ते श्रोतो हूँ सचिन कपूर ले लेनो इजाजत को जो कि इंदी सियाणी अम्मा रहे अक फरमाइश सो पूरी करनी है और अम्मा तो बहुत कुछ सीखने जो मुड़ो आज वो और हे बोलना चाहूँ श्रोतों गंदे गंदे कि प्यार बाप ना कि सो रिश्ते अंदर रखा रिश्ते संभाले करी जरूर रखा माँ बाप जो खुश जरूर रखा प्रकृति जो ठेस किया सो मत पहुँचा प्रकृति जो कि सो साफ सुथरा रखा है ना एनवायरनमेंट जो क्लियर रखा और माँ बाप रे सेवा कर दे रहा मान सम्मान जरूर रखा सियाने रहा इन शब्द था हूँ सचिन कपूर तुसु थो ले लेनो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर ली मैंने। पता भी कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
7: Oh, shit!

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

नमस्कार श्रोतो, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सुनने वालों का, हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने घर में खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और खुश रहना, तंदुरुस्त रहना अक्सर बहुत ज़रूरी होता है श्रोताओं। मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुश रहना। तो चलिए जी, कार्यक्रम में सबसे पहले तो हम श्रोताओं आपके साथ साझा करेंगे धर्मशाला का मौसम कि किस प्रकार का धर्मशाला का मौसम जो है वो आज रहा है। हालाँकि धूप जो है वो देखने को ज़रूर मिली है श्रोताओं, और काफ़ी ज़्यादा धूप देखने को जो है वो मिली है इवन की। तो चलिए, कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बताते हैं धर्मशाला के मौसम के बारे में कि धर्मशाला का मौसम कैसा है। और श्रोताओं, इसके साथ ही आप सभी जानते हैं गुड इवनिंग धर्मशाला में बहुत सारी जानकारियां जो है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। गीत संगीत का पिटारा जो है वो भी चलता रहता है। और बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं, आज जो है वो लगभग टेम्परेचर लगभग जो है वो इस समय 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास है श्रोताओं, है ना जी। 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो मौसम है। हालांकि थोड़ा सा मौसम में जो है वो हल्का सा बदलाव भी देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ धूप जो है वो हुई थी। पिछले रात जो है श्रोताओं बताना चाहता हूँ कि बारिश भी हुई थी, रात में नहीं, सुबह के समय हम कह सकते हैं कि बारिश भी हुई थी, है ना। और आप सभी बने हुए हैं इस समय RJ सचिन कपूर के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे श्रोताओं, लेकिन आइए आगाज़ कर लेते हैं कार्यक्रम का, और आगाज़ के बाद अन्य जानकारियां आप तक हम ज़रूर शेयर करेंगे। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आप सभी की वीडियो सेट पर।

श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अब आपसे शेयर करते हैं कुछ एक जानकारियाँ। श्रोतो नगर निगम धर्मशाला के चुनाव संपन्न होने के बाद अब धौलाधार की वादियों का राजनीतिक पारा पूरी तरह गर्मा गया है। चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही जहां एक तरफ जनता नई नगर सरकार से विकास कार्यों की उम्मीद लगाई बैठी है, वहीं दूसरी तरफ निगम के भीतर मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी को लेकर जो है वो कयास लगाना शुरू हो गए हैं। कुल 17 वार्डों में से भारतीय जनता पार्टी ने 11 वार्डों पर जो है वो शानदार जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। श्रोतों इस आंकड़े से ये तो साफ है कि शहर का अगला मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो भाजपा का ही होगा, लेकिन पार्टी के भीतर ये ताज किसके सर जो है वो ये ताज सजेगा इसे लेकर सस्पेंस गहरा लग रहा है। दिलचस्प बात यह है श्रोतों की प्रशासन की ओर से अभी तक मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आधिकारिक आरक्षण रोस्टर जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जीते हुए पार्षदों ने हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय अपनी दावेदारी मजबूत करना शुरू कर दिया है। श्रोतों पुराने रोस्टरों के आधार बनाकर भीतर ही भीतर जो है वो सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि इस बात का अंतिम फैसला भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ही करना है, लेकिन अपनी ओर से कोई भी पार्षद कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता और गोटियां फिट करने में जो है वो जुट गया है। अगर धर्मशाला नगर निगम के इतिहास और समीकरणों पर नज़र डालें तो

वर्ष 2016 में पहली बार एमसी महिला कोटे से वजनी ब्यास महापौर बनी थी। इसके बाद सामान्य कोटे से अगले 2.5 साल के लिए दविंदर जग्गी ने ये कमान संभाली थी। नगर निगम के दूसरे कार्यकाल में एसटी वर्ग से संबंध रखने वाले ओंकार नहरिया महापौर बने, जबकि पिछले 2.5 सालों हमें सामान्य ऋणी से नीनू शर्मा को महापौर की जिम्मेदारी जो है वो मिली। इस रोटेशन के आधार पर राजनीतिक गलियारों में कयास लगाई जा रही है कि इस बार ये पद एससी ओपन या फिर सामान्य के खाते में जा सकता है। यदि एससी ओपन रहता है तो खन्यारा आरक्षित वार्ड से जीतकर आए प्रवीण कुमार को पार्टी कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकती है, ऐसा गुप्त सूत्रों से जो है वो पता लगा है। बहरहाल कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय चल रहा है श्रोताओं, चलिए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। जानकारियों का बेटारा, गीत संगीत का बेटारा यूं ही चलता रहेगा आपके रेडियो सेट पर।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने वेड़ी गुंजन धर्मशाला ट्यून किया है और मैं हूँ सचिन कपूर। हाँ बिल्कुल, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, है ना। बिल्कुल, और इसके बाद हम गीत सुनेंगे श्रोतो, दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या। हाँ ये बात तो बाकी में ही कि दीवानों से पूछो जरा मोहब्बत है क्या। और हमने मोहब्बत में बहुत सारे लोगों को जो है वो गिरते देखा है श्रोताओं, संभलते देखा है, टूटते देखा है, बिखरते देखा है, बनते देखा है, सजते देखा है, सवरते देखा है। ये मोहब्बत है ही ऐसी चीज़ ना श्रोताओं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं श्रोताओं। पहली बार मोबाइल और ऐप से होगी डिजिटल जनगणना। जी बिल्कुल श्रोताओं, कांगड़ा में तैयारियां जो हैं वो पूरी तरीके से है, फुल तरीके से है और अब डिजिटल तरीके से जो है वो जनगणना होगी श्रोताओं। विकास योजनाओं और भविष्य को नई दिशा देने के लिए इस बार जनगणना प्रक्रिया को पूरी तरह आधुनिक और तकनीक आधारित बनाया जा रहा है श्रोताओं। देश के इतिहास में ये पहली बार है जब पारंपरिक कागजी दस्तावेजों को छोड़कर डिजिटल जनगणना अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत अधिकांश कार्य टैबलेट, मोबाइल और एप्लीकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपन्न होगा श्रोताओं। डिजिटल माध्यम अपनाने से न केवल डाटा संकलन और विशेष तौर पर यह है कि रफ्तार जो है वो तेज होगी, है ना जी, और बल्कि आंकड़ों पर जो है वो पारदर्शिता, सटीकता और विश्वास से जो है वो सुनिश्चित जो है वो आंकड़े किए जाएंगे श्रोतों। इस नई व्यवस्था में सबसे बड़ी खास बात ये है कि नागरिकों को भी सीधे तौर पर इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनने का मौका जो है वो दिया जा रहा है। इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता इसका जन भागीदारी पर आधारित तो होना है श्रोतों। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज भैरवा ने बताया कि 1 जून से 15 जून के बीच आम जनता के लिए एक निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल जो है वो खोला गया है, जहां लोग स्वयं जाकर अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज सेल्फ मतलब करवा सकते हैं। इसके बाद नागरिकों द्वारा दर्ज की गई इस जानकारी का प्रशासनिक अधिकारियों और गणना कर्मियों द्वारा घर घर जाकर जो है वो सत्यापन किया जाएगा। इसे डाटा जो है वो भी बेहद तेज मिलेगा श्रोतों और सुरक्षित रहेगा और सुविधाजनक भी हो जाएगा, है ना जी। स्वयं जानकारी दर्ज करने की इस अवधि के ठीक बाद यानी 16 जून से 15 जुलाई तक जनगणना का पहला चरण शुरू होगा, जिससे हाउस लिस्टिंग, मकान सूचीकरण नाम दिया गया है श्रोताओं। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान गणनाकर्मी प्रत्येक घर का विवरण, मकानों की संख्या, भवनों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और परिवारों से संबंधित प्रारंभिक डेटा डिजिटल उपकरणों से तेज करेंगे। ये चरण आगामी विस्तृत जनगणना के लिए जो है वो एक मजबूत और सटीक आधार तैयार करेगा। जानकारियों का पिटारा श्रोताओं इसी तरह चलता रहेगा। आपके अपने रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में आइए, सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: अरे भाई प्यार के चक्कर में तुम लोग और कितने चक्कर लोगे?
1: शोधो एफ एम एंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। तो श्रोतो 6:30 हो चुके हैं और अब वक्त हुआ है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद अन्य जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाएंगे।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं सचिन कपूर आपके साथ। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत सी जानकारियां जो आप तक हमने पहुंचानी है श्रोताओं, तो धीरे धीरे सारी जानकारियां जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं इस समय तो वो सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आपके अपने आरजे सचिन कपूर के साथ। जी बिल्कुल, आइए तो लेके चलते हैं आप सभी को जानकारी के पिटारे की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर जिला कांगड़ा के सभी ग्राम पंचायतों में 5 जून 2026 को विशेष ग्राम सभा आयोजित जो है वो की जाएगी। श्रोताओं, उपायुक्त कांगड़ा हेमराज भैरवा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि पंचायत राज विभाग हिमाचल प्रदेश तथा भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप ये विशेष ग्राम सभा आयोजित की जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान के अंतर्गत 1 जून से 5 जून 2026 तक चलाए जा रहे हैं जन जागरूकता कार्यक्रमों के समापन अवसर पर ग्राम सभाओं में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ठोस एवं प्लास्टिक प्रबंध, प्लास्टिक और कूड़ा कचरा, जल संरक्षण तथा सुरक्षित स्वच्छता व्यवहारों को बढ़ावा देने पर विशेष चर्चा जो है वो श्रोताओं की जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विशेष ग्राम सभाओं में जल स्रोत की सुरक्षा, जल ग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण और वर्षा जल को किस तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना जी, जल स्रोतों एवं जल निकायों के संरक्षण, पेयजल गुणवत्ता निगरानी, है ना, ये सभी चीज़ों का जो है प्रदूषण से जो है वो जल प्रदूषण को कैसे जो है वो हम बचा सकते हैं, जल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, जल प्रदूषण को कैसे हम कम कर सकते हैं, और इन्हीं सभी प्रयासों पर जो है वो विचार विमर्श किया जाएगा श्रोताओं। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत भविष्य के कार्य योजनाओं पर भी जो है वो चर्चा की जाएगी। उपायुक्त डीसी साहब हेमराज भैरवा ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति एवं सभी खंड विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने अपने क्षेत्र में विशेष ग्राम सभा के सफल आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक जन भागीदारी के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। अब ये नई पंचायतें जो बनी हैं, इनको भी, इनके जो प्रधान हैं, इनको भी इस चीज़ का जो है वो बिल्कुल ज्ञात होना चाहिए। डीसी साहब के ऑर्डर हैं और एक जो है वो ज़रूर इस तरह, क्योंकि जल के बारे में जो है वो बताया जाएगा अच्छे तरीके से, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस अवसर पर जो है वो ज़िला कांगड़ा के सभी ग्राम पंचायतों में 5 जून 2026 को विशेष ग्राम सभा आयोजित हो जानी चाहिए। ये डीसी साहब के ऐसे ऑर्डर हैं। चलिए, हमारी भी नई पंचायत बनी है योल और देखते हैं योल के बाशिंदे क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने योल के बाशिंदों ने क्या सुना है, क्या किया है, किस तरह से वो अवेयर हैं, उसके लिए भी हमें जो है वो बिल्कुल जो नए प्रधान बने हैं उन्हें सपोर्ट करना है, वो प्रधान को सपोर्ट करना है ना जी। तो चलिए, उम्मीद है कि अब स्लेड़ गोदाम पिछड़ा हुआ इलाका नहीं रहेगा, अब टीका चतैड़ जो है वो पिछड़ा हुआ इलाका नहीं रहेगा, अब यहाँ पे ग्राम सभा चलेंगी, अब यहाँ पे जो है वो काम होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद जो है वो स्लेड़ गोदाम, योल कैंट बड़ी मुश्किल से कैंटोनमेंट से जो है वो पंचायत में आया है। तो चलिए देखते हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यही कहना चाहूँगा। फिलहाल कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं और लेके चलेंगे आप सभी को इस प्यारे से,
1: सब्सक्राइब कीजिए
0: और बने रहिएगा हमारे साथ।

91.2 MHz पर वेरी गुंजन धर्मशाला। आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना हारचे वीडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप सभी का अंतराल के बाद। आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और आप सभी सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आपके अपने आरचे वीडियो जो कि सचिन कपूर के साथ। तो आइए अगली जानकारी की ओर आपको लेके चलते हैं, अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अंजन कुमार कालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मशाला एवं आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 से प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गांधी स्मृति वाटिका कोतवाली बाजार धर्मशाला में गोष्ठी एवं जागरूकता रैली का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में इस वर्ष भी 5 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जो है वो विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में धर्मशाला तथा आसपास के क्षेत्रों के अनेक सामाजिक एवं पर्यावरणीय संस्थाएं भाग लेंगी। इनमें जन चेतना, एजुकेयर इंडिया, वेस्ट वॉरियर्स, नगर निगम धर्मशाला जागोरी, धर्मशाला एनवायरमेंट्स ग्रुप, धौलाधार क्लीनर्स, निष्ठा केंद्रीय तिब्बत प्रशासन, भारतीय स्टेट बैंक धर्मशाला तथा व्यापार मंडल धर्मशाला सहित अन्य संस्थाओं की सहभागिता रहेगी। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण के संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए एक जागरूकता रैली भी जो है वो निकाली जाएगी। श्रोतों, प्रोफेसर कालिया ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा निर्धारित इस विषय के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम अब जलवायु के लिए है। इसी विषय को केंद्र में रखते हुए प्रतिभागियों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों तथा उनके समाधान के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने धर्मशाला एवं आसपास के क्षेत्रों में नागरिकों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों तथा पर्यावरण प्रेमियों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों को मजबूत बनाने का आह्वान किया। जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा श्रोतों, आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए लेके चलते हैं आप सभी को गुड इवनिंग धर्मशाला के इस प्यारे से गीत की ओर।

14 FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए गुड इवनिंग धर्मशाला को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं श्रोतों। और जैसे कि आप सभी इस खबर से, मुझे लगता है क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम और अखबारों में रेडियो पर हर जगह ये खबर जो है वो चली है पिछले कल से श्रोतों, क्योंकि पिछले कल हमारे धर्मशाला के दाड़ी में काफ़ी बड़ा हादसा जो है वो हुआ श्रोतों। और अभी यह हादसा आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। वैसे हमने पिछले कल भी ये जानकारी आप तक पहुँचाई थी, लेकिन ये पूरी जानकारी है श्रोतों। जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला के दाड़ी क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक महिला द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला जो है वो सामने आया। मृतक की पहचान मिली, आयु 45 वर्ष, पत्नी हिमेश कार्की निवासी दाड़ी धर्मशाला के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के पति और सास के खिलाफ जो है वो आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज कर दिया है और जाँच शुरू हो गई है। और सास और दोनों आरोपी जो हैं वो इस समय श्रोताओं पुलिस कस्टडी में है। मिली जानकारी के अनुसार चीलघाड़ी निवासी पुलमजा ने पुलिस थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बहन मिली की शादी वर्ष 2006 में दाड़ी निवासी हिमेश कार्की से हुई थी। उनका बेटा भी है एक, जो कि 16 वर्ष का है। शिकायत के अनुसार शादी के करीब एक वर्ष के बाद जो है वो पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया था और दोनों के बीच तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन था। आरोप है कि पति और सास के व्यवहार से आहत होकर मिली ने मंगलवार को सुबह करीब 7:30 बजे जो है वो अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हिमेश कार्की और नीना कार्की के खिलाफ जो है वो भारतीय न्याय सहित की धारा BNS की धारा 108 और 3-5 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस विभाग कांगड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP वीर बहादुर सिंह ने बताया कि मामले की जांच जो है वो बिल्कुल जारी है। तो आइए कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं आपके अपने वीडियो सेट पर, लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आपने ट्यून किया है और अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन में समाचारों का।
1: जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
2: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
2: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपये से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो गया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेरी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और वाकई में ही जिला कांगड़ा की बात है, ये सुनकर थोड़ा सा आश्चर्यजनक मैं ज़रूर हुआ हूँ। श्रोतों, स्कूल जा रही नाबालिका से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की कैद मिली है। प्रदेश के जिला कांगड़ा में रिश्तों को तार तार करने वाले एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट विजय लक्ष्मी की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्कूल जा रही एक नाबालिग छात्रा के साथ सुनसान रास्ते पर ले जाकर छेड़छाड़ और जबरन चूमने का प्रयास करने वाले चाचा आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। इसके अलावा आईपीसी की धारा 506 के तहत भी दोषी को 1 साल की कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। दोनों ही सजाएं साथ साथ चलेंगी। श्रोताओं, मिली जानकारी के अनुसार मामला 20 नवंबर 2023 का है। पुलिस को भेजी शिकायत में स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि पीड़ित ने उन्हें रोते हुए लिखित शिकायत सौंपी थी। पीड़ित ने बताया था कि जब वह सुबह अपने घर से स्कूल जा रही थी तो उसी के गांव के एक व्यक्ति जो रिश्ते में उसका चाचा लगता था उसे बहला फुसलाकर अपनी दुकान में बुलाया। आरोपी ने पीड़िता से कहा कि वह बाजार जा रहा है और रास्ते में उसे स्कूल के बाहर छोड़ देगा। मासूम बच्ची उसकी बातों में आ गई और गाड़ी में बैठ गई, लेकिन आरोपी उसे स्कूल छोड़ने की बजाय एक सुनसान रास्ते में ले गया। वहां उसने पीड़ित के साथ अश्लील हरकतें और छेड़खानी शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित को छोड़ दिया। पीड़िता ने जैसे तैसे स्कूल पहुंचकर उसी समय पूरी आपबीती अपने प्रिंसिपल को बताई, जिसके बाद तुरंत हरिपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले की पैरवी सरकार की तरफ से उस जिला न्यायाधीश डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटोर्नी नवीना राही ने की। उन्होंने अदालत के समक्ष कड़े सबूत और एक एक करके सभी 31 महत्वपूर्ण गवाह पेश किए। अभियोजना पक्ष की ओर से पेश किए गए जिसके आधार पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। और ये वाकई में ही रिश्तों को तार तार करने वाली जो है वो बात है कि अब किस तरह से जो है मतलब कहने वाले वो रिश्ते में चाचा हैं और चाचा अगर इस तरह की हरकतें करते हैं श्रोताओं तो वो वाकई में ही शर्मसार वाली हरकतें हैं, वो वाकई में ही रिश्तों को तोड़ने वाली बातें हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो चल रहा है। श्रोतो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और 4 वर्ष के लंबे इंतज़ार के बाद जो है वो पठानकोट जोगिंदर नगर नैरोगज रेल सेवा का संचालन पुनः शुरू हो गया है। श्रोतो हालांकि रेल सेवा बहाली के साथ ही उद्घाटन समारोह को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। कांगड़ा घाटी रेलवे संघर्ष समिति ने इस कार्यक्रम को जनता के साथ मजाक करार देते हुए इससे उद्घाटन नहीं बल्कि जनता के संघर्ष की जीत बताया है। समिति के संयोजक एवं राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि कांगड़ा घाटी रेलवे की बहाली किसी सरकार या अधिकारी की उपलब्धि नहीं बल्कि 4 वर्षों तक जनता द्वारा किए गए संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने इस ऐतिहासिक रेल लाइन का निर्माण मात्र 3 वर्षों में कर दिया था जबकि चक्की पुल टूटने के बाद 4 वर्ष बीत जाने पर भी रेल सेवा बहाल नहीं हो सकी। उनके अनुसार ये स्थिति रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठाती है। श्रोतों चलिए कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा आरजे सचिन कपूर के साथ, वेड़ी गुंजन की इसी गूंज के साथ।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। तो आइए श्रोतो, कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और आप सभी इस समय बने हुए हैं वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ, और लेके चलते हैं आप सभी को इस छोटे से अंतराल की ओर। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा वेड़ी गुंजन के साथ।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त।

करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग। हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov।
3: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
4: मैंने तो गलती कर दिया तुमसे शादी करके।
5: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
4: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
6: Oh shit!

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। वाकई में श्रोतो ये गीत तो सुनने को बनता है ना कि ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, सुनेंगे ज़रूर। लेकिन उससे पहले आपको जानकारियों की ओर लेके चलते हैं श्रोतो। पहले फिटनेस फिर सिलेक्शन होगी। जी बिल्कुल, रोहित हार्दिक को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले जो है वो बीसीसीआई का अल्टीमेट है। अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा व स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अंतिम एकादश में जगह से पहले उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लियरेंस हासिल करना होगा। हार्दिक को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल तो किया गया है, लेकिन उनके नाम के साथ जो है वो फिटनेस संबंधी शर्तें भी जोड़ी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक मंगलवार को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ सेलेक्शंस पहुँचे और सीरीज शुरू होने से पहले वहाँ एक सप्ताह से अधिक समय बिताएंगे। इस दौरान 32 वर्षीय ऑलराउंडर को फिटनेस ड्रिल फिजिकल जो है उससे गुजरना होगा। श्रोताओं, फिटनेस ड्रिल से गुजरना होगा, फिटनेस फिजिकली चीज़ों से जो है वो गुजरना पड़ेगा, तभी मानकों पर खरा उतरने के बाद ही उन्हें खेलने की मंजूरी जो है वो मिलेगी। इसके बाद ही अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में उनकी उपलब्धता पर अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा। हार्दिक का आखिरी वनडे मुकाबला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ था। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी बीसीसीआई ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करने के लिए कहा है। रोहित आईपीएल 2026 के दौरान किसी चोट के कारण जो है वो किसी चोट के कारण की वजह से जो है वो जूझ रहे थे। इसी कारण अफगानिस्तान सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम में उनके नाम के आगे भी फिटनेस संबंधी शर्तें लगाई गई हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस के हेड कोच महिला जयवर्धने ने हाल ही में ही दावा किया था कि रोहित पूरी तरह फिट हैं। जयवर्धने के मुताबिक रोहित को चोट से उभरने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था और मेडिकल टीम ने उन्हें 100% फिट माना है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि आईपीएल में रोहित का जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल टीम की रणनीति का हिस्सा था, इसका उनकी फिटनेस से कोई संबंध नहीं था। जयवर्धने ने कहा है कि मुंबई इंडियंस अपनी टीम की ज़रूरतों के हिसाब से फैसले लेती है और रोहित शर्मा हमेशा टीम की मांग के अनुसार खुद को ढालते हैं। तो जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा श्रोतों। ये शाम मस्तानी हम ज़रूर सुनाएंगे लेकिन इन प्रादेशिक समाचारों के बाद। जी बिल्कुल, आप सभी बने हो इस समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और अब वक्त हो गया है श्रोताओं 7:45 यानी कि वक्त हुआ है प्रादेशिक समाचारों का रेडी गुंजन धर्मशाला में।
1: जानकारी लें, अधिकार जानें,
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है जिसमें निशुल्क काउंसलिंग उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, समाज को शिक्षित करने और सकारात्मक परिवर्तन लाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य सरकार ने मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य आखेट पर लगने वाली रॉयल्टी को घटाकर 1% करने का लिया निर्णय। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा, पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव परिणाम, कांग्रेस के खिलाफ जनता का अविश्वास प्रस्ताव। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए लागू। और सामाजिक न्याय व सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत को देश भर में मिला प्रथम स्थान। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि समाज को शिक्षित करने और सकारात्मक परिवर्तन लाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आज लोकभवन शिमला में हिमाचल प्रदेश की प्रेरणादायक उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल हाई फ्लायर के लोकार्पण अवसर पर ये बात कही। राज्यपाल ने प्रदेश के विकास और प्रगति में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को पहचान दिलाने की इस पहल की सराहना की। इस दौरान उन्होंने पुस्तक में शामिल कई विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। कविंद्र गुप्ता ने नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशा आज समाज में एक गंभीर चुनौती बना हुआ है और युवाओं के लिए बड़ा खतरा बन गया है। राज्यपाल ने नशे की समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों पर भी बल दिया। राज्य के विभिन्न जलाशयों में मत्स्य पालन गतिविधियों से जुड़े मछुआरों की आय को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने मत्स्य आखेट पर लगने वाली रॉयल्टी को 7.5% से घटाकर 1% करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस निर्णय से गोविंद सागर, पौंग बांध, चमेरा, रणजीत सागर और कोल बांध जलाशय पर आजीविका के लिए निर्भर करीब 6,500 मछुआरा परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नीति समर्थन, बुनियादी ढांचे के विकास और मूल्य संवर्धन पहलों के माध्यम से मछुआरों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने डीके शिवकुमार को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में कर्नाटक विकास और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव परिणामों ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दिशा व दशा स्पष्ट कर दी है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा के पक्ष में अभूतपूर्व जनादेश देकर ये संकेत दे दिया है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का समय निकट है। रणधीर शर्मा ने कहा कि ये केवल चुनावी जीत नहीं है बल्कि जनता द्वारा कांग्रेस के खिलाफ सुनाया गया अविश्वास प्रस्ताव है।
5: चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हालत हुई उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की ये सरकार ये चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहिए। मुख्यमंत्री समेत मंत्री विधायक उनके जानते थे कि जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं, किस मुंह से वोट मांगेंगे। हमने पहले भी कहा था वो इसीलिए चुनाव को लटका रहे। आज चुनाव परिणामों ने हमारे आरोप को सत्यापित किया। हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों की प्रचंड जीत जो है वो दिलवाई। जनता ने प्रदेश से इस सरकार को हटाने का, उखाड़ने का मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का मन बना लिया।
4: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंजूरी दे दी है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रदेश के 3 जिला न्यायिक अधिकारियों चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल को जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और अधिसूचना जारी होने के बाद ये नियुक्तियां प्रभावी होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार ने गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 राज्यों के लिए 10,021 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री के हाउसिंग फॉर ऑल संकल्प को नई गति प्रदान करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब वंचित व आवासहीन परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत देश भर में अब तक लगभग 3 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और हिमाचल को भी इस योजना का निरंतर लाभ मिल रहा है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुधार लागू किए जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। शिमला में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्नातक डिग्री पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसशिप समाहित डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगी। इस पहल के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न उद्योगों के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा और उन्हें स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महाविद्यालय स्तर पर विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी सरकार विचार कर रही है। लाहौल स्पीति जिला की शांशा पंचायत को सामाजिक न्याय व सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश भर में प्रथम स्थान मिला है। शांशा पंचायत को प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पंचायत प्रधान प्रशांत को प्रदान किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
6: लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है। पंचायत को सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश भर में प्रथम स्थान मिला है। इस उपलब्धि से पूरे पंचायत क्षेत्र में खुशी का माहौल है। पूर्व जिला परिषद सदस्य कुंगाबोध ने पंचायत के सभी लोगों, कर्मचारियों और जिला प्रशासन को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये सम्मान सामूहिक प्रयासों, मेहनत और समर्पण का परिणाम है। शांशा पंचायत की इस उपलब्धि ने लाहौल स्पीति और पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
4: इस बीच मंडी जिला के बलह विकास खंड की लोहारड़ी ग्राम पंचायत ने क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा सोलन में 111 घंटों की हैकथॉन का आयोजन किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के शोधकर्ताओं ने भाग लिया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के प्रभारी डॉक्टर नवनीत ने बताया कि इस हैकथॉन में पुराने समय में किस तरह से जीव जंतुओं का संरक्षण व संवर्धन किया जाता था उस पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य भविष्य में नवीनतम व पौराणिक तरीके से जीव जंतुओं का संरक्षण करना है।
7: उनका मतलब भी ये है कि एक लॉन्ग डिस्कशन लीडिंग टू सम कंक्लूजन। सो हम साइंटिफिक डिस्कशन करते हैं, लंबी डिस्कशन, जैसे पूरी ZSI मिलकर 111 घंटे का ये डिस्कशन। इस साल का जो थीम है वो हमारा है ट्रेडिशनल नॉलेज इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कि बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे बचाएं ट्रेडिशनल नॉलेज के तहत। मुख्य उद्देश्य इसमें ये है कि भाई जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारे पुराने आज विलुप्त हो रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि जो पुराने जो नॉलेज था हमारा, जो बुजुर्गों का नॉलेज था वो खत्म हो रहा है। इससे पता चलेगा कि बच्चे जो है वो फिर उसी ट्रेडिशनल को सामने ला रहे।
4: नाहन शहर में लंबे समय से पानी का बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ जल शक्ति विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। विभाग के सहायक अभियंता रोशन शर्मा ने बताया कि शहर में करीब 120 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने बार बार नोटिस के बावजूद अपने बिलों की अदायगी नहीं की है। उन्होंने कहा कि यदि उपभोक्ता एक सप्ताह के भीतर अपने पानी के बिलों का भुगतान नहीं करेंगे तो बिना नोटिस उनके पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
8: जो बिलिंग में है हमने कम से कम उनको लोक अदालत से भी 3-3 बार नोटिस भी चले गए, खुद मेरे द्वारा भी उनको नोटिस चले गए। विद इन 7 डेज में अगर वो नहीं देते तो उनके कनेक्शन काट दिया जाएगा, ना उनको कोई नोटिस मिलेगा। हम उनको बार बार फोन भी कर रहे हैं, कम से कम 120% ऐसे जो टाइम से अपना भुगतान नहीं कर रहे हैं, अमाउंट 10,000 से भी ज्यादा, तो अब उनको ना कोई दी जाएगी, सिर्फ कनेक्शन कटेंगे।
4: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, समाज को शिक्षित करने और सकारात्मक परिवर्तन लाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य सरकार ने मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य आखेट पर लगने वाली रॉयल्टी को घटाकर 1% करने का लिया निर्णय। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा, पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव परिणाम कांग्रेस के खिलाफ जनता का अविश्वास प्रस्ताव। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए लागू और सामाजिक न्याय व सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत को देश भर में मिला प्रथम स्थान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: तो श्रोतो, अब मैं यानी कि सचिन कपूर भी आपसे ले लेता हूँ अलविदा, क्योंकि ये शाम मस्तानी है और इसको और मस्ताना हम ज़रूर करेंगे इस खूबसूरत से गीत के साथ। तो चलिए, मैं सचिन कपूर आपसे लेता हूँ अब अलविदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेडी गुंजर में आरजे सचिन कपूर को यूं ही सुनते रहिए और सुनाते रहिए। नमस्ते धर्मशाला।

0: कैसे इसे सफल बनाए, हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दिया तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
7: Oh,

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दिया तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
7: Oh, shit!

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दिया तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर ली मैंने। पता भी कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: फिर लोगों को बिना भोजन भेज दूं माँ, ये तो अभी तक आए भी नहीं है माँ।
1: ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।